किशोरदास से। किशोरदास जी से हमने सुने कि मैं आशिक हूँ बहारों का टाइटल सॉन्ग आपके लिए चला दिया गया है। फाहम रेडियो से आप और मैं जुड़े हैं।

इश्क हुआ आजा नाच ले फिल्म का नाम। सोनू निगम और श्रिया घोषाल जी की आवाज में इश्क हुआ। शब्द शब्द यानी कि बोली बोली जो आप और हम सुनते हैं ना, शब्द से खुशी मिलते हैं, शब्द से गम मिलते हैं, शब्द से पीड़ा भी मिलते हैं। ऐसे कोई कड़वा शब्द आपको कह दे तो आप जरूर घायल हो सकते हैं। और शब्द ही मरहम है, शब्द ही मरहम है। आपसे कोई दो मीठे बोल दे तो आप जरूर से जो गम है वो भूल सकते हैं। पर जो गम आपको है वो कितने गहरा है ये मुझे पता नहीं, फिर भी शब्द ही मरहम होता है।

0: ये देखो ताजमहल,
1: लाल पत्थर का ताज।
0: ताज ही है, किसने लाल पोत दिया है?
1: इस इमारत का नाम बताओगे या मैं जाऊं?
2: हुमायूं का मकबरा। इतने पैसे नहीं थे कि तुम्हें आगरे ले जाके ताज दिखाऊं। सॉरी।
1: आज से हुमायूं का मकबरा ही मेरे लिए ताजमहल है। हमारी मोहब्बत जितना खूबसूरत है।

0: गुरुद्वारे में दाखिल होने से पहले सर ढक लेते हैं।
1: दरगाह में भी
0: मत्था टेकने से पहले हाथ मुंह धोते हैं,
1: सजदा करने से पहले भी।
0: दरगाह में कड़ा प्रसाद नहीं मिलता,
1: तबर्रुक मिलता है। मेरी इबादत तुम्हारी इबादत,
0: तुम्हारी मोहब्बत।

0: ताज।
1: हुमायूं का मकबरा।
0: हमारी मोहब्बत जितनी
2: राहत फतेह अली खान और महालक्ष्मी आयर जी के आवास में आपने सुने बोलना हल्के हल्के। सुने हुए बातों पर भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। जी हाँ ऐ मेरे दोस्त, कि सुने हुए बात पर भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वो भाग कभी नहीं सुनाएगा जहाँ वह स्वयं गलत था।

खुद के बारे में, खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो ना किसी फकीर से पूछो, बस कुछ देर आँख बंद करके, कुछ देर आँख बंद कर अपने ज़मीर से ज़रूर से पूछें।

प्रेम में, प्रेम में पुरुष कभी पुरुष हुआ ही नहीं, प्रेम में पुरुष कभी पुरुष हुआ ही नहीं। वो स्त्री के छाती से चिपक कर एक छोटा बच्चा बन जाता है। और प्रेम में पड़ी स्त्री माँ के समान हो जाती है। आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

फिल्म का नाम CID, फिल्म का नाम CID, मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में यहाँ से मिलकर और आपके लिए हम श्रवण की है और आपके लिए पेश किया गया है। नेहन 3605 तक में ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। और कहते हैं कि 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, क्योंकि शरीर को ठीक रहना ये आवश्यक है। 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। 1,00,000 काम छोड़कर दान करना चाहिए। और करोड़ों काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। करोड़ों काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जिस समय कोई समस्या जन्म लेता है, उसी समय उसी का हल समाधान भी जन्म लेता है। Met andere woorden, elk probleem heeft een oplossing.

कारण हो, कोई भी कारण हो, कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, जोर से मत बोलो।

जोर से मत बोलो, तकलीफ सिर्फ आपको होगा, दुख भी आपको ही होगा। आवाज से आवाज नहीं मिल, आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुपकी, चुपकी से बल्कि चुपकी से मिटती है। मन शांत रखो, विचार करो फिर निर्णय लो। मन शांत रखो तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको आसानी से मिल जाएगा। मेरी बात मान लो, ये सही है। इस बार आपके लिए चुनकर और लाई हूँ लता जी और महेंद्र कपूर जी की आवाज में कि हमने देखे सपने।

0: अवश्य हमने जो देखे सपने वो सच हो गए। परिवार छोड़कर कितने भी दोस्त बना लो, मगर याद रखना भाई, मगर याद रखना भाई से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता, क्योंकि दुख में भाई से ज्यादा कोई समझदार नहीं होता है। जिस घर के भाइयों में एकता होता है, उस घर के तरक्की भी सबसे ज्यादा होती है।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070

पेश किया गया है मेम साहब फिल्म का नाम मेम साहब फिल्म का नाम निगमुद्दीन ए नसीफ तख्त में ये पिक्चराइज किया गया है। अपने दिमाग से बाहर आए, अपने दिमाग से बाहर आए और जो समस्या है ही नहीं उसे ज्यादा सोच सोच कर बड़ा नहीं बनाए, उसे सोच सोच कर बड़ा नहीं बनाए। अपने दिमाग से बाहर आओ और जो समस्या है ही नहीं उसे ज्यादा सोच सोच कर बड़ा नहीं बनाओ। इस बार आपके लिए है किशोर दा जी की आवाज में कि आदमी जो कहता है, और आगे जरूर से आप इस गीत के जरिए से सुने कि और क्या कहते हैं।

बात तो सही है कि आदमी जो कहता है सुनता है वो सदा ही पीछा करता रहता है। उधारी का पैसा जब तक आप नहीं मांगे तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन से आप अपना दिया हुआ पैसा वापस मांगने जाएंगे तो उस दिन से, सुनिए जी, उस दिन से मांगने वाला आपको उधारी का पैसा जब तक आप नहीं मांगेंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन से आप अपना दिया हुआ पैसा वापस मांगने जाएंगे उस दिन से सामने वाले आपको बुरा समझने लगेगा। उनमें से तो कुछ दुश्मन बन जाएगा, कुछ बातचीत करना बंद कर देंगे और कुछ बदनामी करने लग जाएंगे, और तो कुछ लोग जो है जिसके आप पैसे दिए हो और आप उन्हीं पैसा अपने पैसा वापस मांगने जाओगे तो हमने बताया, और उसमें से भी कुछ आपके जान के पीछे पड़ जाएंगे। बहुत कम लोग ही ऐसा होता है जो इज्जत से समय पर पैसा लौटा देते हैं। बात ऐसे है कि जब उन्हें उधारी देंगे तो कोई नहीं जानेगा, लेकिन जब वापस मांगने जाओगे तो वो लोग हंगामा खड़ा कर देंगे और पूरी दुनिया जान जाएगी। ये भी कुछ जाने पहचाने शब्द है ना।

दान करने से ज्यादा पुण्य उधारी चुकाने में मिलता है। आप उधार लिए हैं तो उसे पहले चुका दो, तो फिर जो आप दान करोगे तो कई पुण्य मिलेगा। उधारी का पैसा रोक कर दान धर्म करना एक तरह का पाप होता है, इसलिए सबसे पहले उसका पैसा लौटाए जिसके आपको जिसने आपको अच्छे इंसान समझकर आपके बुरे वक्त में

0: मैंने कहा बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक समझे कि नहीं?
1: आपने सुने, ये पब्लिक है, अवश्य अवश्य ये पब्लिक है। परिश्रम का फल, परिश्रम का फल, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, देर से ही सही लेकिन फल जरूर देती है। सपने को हकीकत में बदलने का रास्ता सिर्फ परिश्रम में ही होती है। भाग्य से ज्यादा मेहनत पर भरोसा करो।

आराम मंजिल के बात लो। परिश्रम से आत्मविश्वास बढ़ता है, परिश्रम से आत्मविश्वास बढ़ता है।

फिल्म लवारिस से निकाल दिया गया है। और आप तो जानते हैं फिल्म लवारिस में सीना तमन और अमिताभ बच्चन जी अपना कला दिखाए हैं। किशोर दा जी की आवाज में पेश किया गया आपके लिए आपिका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

जी, ये रफ़ी जी सुनाती है कि आवाज़ वो नहीं देगा, पर हमारे खातिर ये सुंदर सुंदर गीत और गाकर चले गए हैं। सुनने वालों, हम बेशब्द हो जाते हैं, क्योंकि ये सब गीत कभी पुराना नहीं होता है, ये हरदम से सदा ही नूतन रहेगा। नूतन मतलब कि नए रहेगा, नवा रहेगा। अब मेरे ख्याल से आप जिस तरह से सुनते हो, जहाँ पे भी सुनते हो, अगर आपको थोड़ा सा पकड़ आ जाएगा तो आप ज़रूर से इसे भी गुनगुनाने लगते होंगे। और साथ ही साथ मेरे ख्याल से आपको वो सब ख्याले जो है ताज़ा करा देते हैं। रफ़ी जी की आवाज़ में हमने श्रवण किए फिल्म का नाम दोस्ती।

दूसरों के परेशानियाँ दूसरों के परेशानियाँ का आनंद ना लिया करो, कहीं भगवान आपको वो गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलती है। तो इस पर हम जरूर से ख्याल रखें और ध्यान धरें।

दृष्टि नहीं, दृष्टि नहीं, बल्कि दृष्टिकोण सही होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी के रूप में आपको यहाँ पर हम जरूर सुनाना चाहती हूँ, तो यहाँ से हम मिलकर सुने। एक अंधे को मंदिर आया देखकर, एक अंधे जो नेत्रहीन है, सूरदास है, उनको मंदिर में आया देखकर लोग हंस कर बोले, मंदिर में आए हुए लोग एक अंधे को देखकर बोले कि मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो, मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? ये सवाल किया है जो जिनका नेत्र है, जो देखते हैं, और वो सवाल करते हैं जो नेत्रहीन है कि मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? तो वो नेत्रहीन सूरदास अंधे ने मुस्कुरा के कहा, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है मेरे भगवान को, मेरे भगवान तो मुझे देख लेगा, इसलिए दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। वो अंधा बहुत सूरदास क्या सुंदर जवाब दिया कि क्या फर्क पड़ता है, मेरे भगवान तो मुझे देख लेगा।

पता नहीं जिंदगानी का, वो तो बात सही है। अगले पल क्या होने वाला है ये तो मुझे भी नहीं खबर है मेरे दोस्तों। आपको बताती हूँ कि पेंसिल और पेन इन दोनों का अंतर क्या है। हाँ आप तो कह देते होगे, हाँ पेन और पेंसिल में अंतर है। पेंसिल जो है हम कहते हैं अपनी भाषा में पतलोत। पतलोत और पेन के बारे में, पेन और पेंसिल के अंतर जानिए जो जिंदगी से मतलब रखती है। पेन और पेंसिल के अंतर जानिए जो जिंदगी से मतलब रखती है। तो चल के हम यहाँ से जानेंगे। जब हम बड़े हो जाते हैं ना मेरे दोस्तों, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो पेंसिल के बदले हमें पेन दे दिया जाता है, क्योंकि हम समझ जाए कि अब हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं है। एक बच्चा जो शुरुआत करते हैं, या आप भी बड़े हैं जो शुरुआत करते हो कुछ लिखना चाहते हो, तो काफ़ी तौर पे पतलोत से लिखा जाता है, ताकि हम उसे कुछ गलती हो तो हम उसे सुधार सके। और अगर आप पेन से लिख दिए तो उसको सुधारना तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो यही अंतर है पेन और पेंसिल में।

लता जी के आवाज ये सुंदर सा गीत पेश किया गया। फिल्म का नाम धूल का फूल और गीत का बोल तो आपने सुन ही लिया है कि तू मेरे प्यार का फूल है, पर ये भी एक फूल हो गया है। हल्के फूल की सी है जिंदगी, हल्के फूल की सी है जिंदगी, बोझ तो बस खुशियों का है, बोझ तो बस खुशियों का है।

फिल्म नागिन से ये सुंदर सा गीत। लता जी की आवाज में ये जो हम सोचते हैं, सुनने वालों, जो हम सोचते हैं वो सोच का प्रभाव मन पर होता है। जो हम सोचते हैं वो सोच का प्रभाव मन पर होता है, और मन का प्रभाव जो है वो तन पर होता है, यानी लेखाम पर। तो तन और मन का दोनों प्रभाव सारा जीवन पर होता है। मेरे दोस्तों, इसलिए प्यारे दोस्तों, भाई बंधु, सदा अच्छा सोचे और हम सब खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहें।

ख़त्म होने जैसा ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, ख़त्म होने जैसा ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई सुबह आपका हम सबका इंतज़ार करते हैं, हमेशा एक नई सुबह आपका हम सबका इंतज़ार करते हैं मेरे दोस्त। कम लोग हो पर अपने हो, कम लोग हो पर अपने हो, ज़िंदगी तमाशा थोड़ी तो है, ज़िंदगी तमाशा तो नहीं कि भीड़ चाहिए। खोए हुए चीज़ अक्सर खूबसूरत लगने लगती है, खोए हुए चीज़ अक्सर खूबसूरत लगने लगती है, जैसे कि वक्त और बचपन।

हम क्या कहें, हम तो भी बेशब्द हो जाते हैं। ये सुंदर गीत फिल्म का नाम 20 साल बाद, 20 साल बाद फिल्म से निकाला गया लता जी की आवाज़ में, कि कहीं दीप जले और कहीं दिल। मंदिर, मंदिर का मतलब मन और दीर। मन के अंदर जाना ही मंदिर है और अंदर जाने का रास्ता केवल ध्यान है। आनंद वहाँ नहीं जहाँ धन मिले, आनंद वहाँ नहीं जहाँ धन मिले, आनंद वहाँ जहाँ मन मिले।

एक दिव्य शक्ति जो इस संसार को चला रही है, एक दिव्य शक्ति जो इस संसार को चला रही है, उससे यही प्रार्थना है, उससे यही प्रार्थना है कि वो हम सब का भला करे, हम सब का खुश रखे, हम सबको खुशी रखे, हम सबको निरोग रखे, हम सबको आत्मिक शक्ति प्रदान करे।

ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, फिल्म का नाम इज्जत, सदाबहार गीत आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है मोहम्मद रफ़ी जी और लता जी। ये सुंदर सा गीत मिलके और फरमा दी है, अच्छा बनो मेरे दोस्तों, अच्छा बनो। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप, भगवान, अपने आप के लिए, अपने आप के नज़र में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या, दुनिया वालों का क्या, वो तो आपके तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी में हंसेंगे।

लता जी, लता जी की आवाज़ में फ़िल्म का नाम गुमनाम है कोई नहीं, फ़िल्म का नाम तो गुमनाम है, टाइटल सॉन्ग वही फ़िल्म से निकाल दिया गया है कि गुमनाम है। किसी ने रोज़ा रखा तो किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोज़ा रखा तो किसी ने उपवास रखा, कबूल और स्वीकार उसी का दुआ प्रार्थना हुई जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। जमाने से मोहब्बत निभाने वाले, जमाने से मोहब्बत निभाने वाले, पहले उससे तो मोहब्बत निभाओ जिसने तुम्हें जन्म दिया है।

खाई नहीं खाई ठोकर सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण बनती है। एक बार फिर मेरे सुनने वालों, बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण बनती है।

प्यारे प्यारे भाई बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, अभी जब आपकी माता पिता जीवित है तब उनकी खूब देखभाल करो, सेवा करो, और ये ना सोचो कि मैया बप्पा बुढ़ा बुढ़ी हो गया, अब उस सब का कुछ काम लायक ना है, ना धन दौलत ना कुछ है, ये नहीं देखना है मित्रों। क्योंकि परमात्मा को आपने नहीं देखा है, फिर भी हम उनके पीछे भाग रहे हैं। और जिसने आपको जन्म दी है, मैया और बप्पा सेवा की है, पोषण पालन, वो है आपके लिए भगवान। भगवान के बारे में तो माता पिता ने आपको ही बताया है ना, तो मैया बप्पा की खूब सेवा करो, देखभाल करो, बेस्ट मेंशन आपका जीवन सफल हो जाएगा। जो आशीर्वाद मैया बप्पा आपको देंगे वो भगवान के आशीर्वाद से बढ़ कर है। हम सोच रहे हैं भगवान हमको क्षमा करे, ये बतिया उना सुने, मगर वही बतिया बोली से हैं, मैया बप्पा की सेवा करो। और ना सोचो मैया बप्पा बीमार है, गरीब है, कुछ ना है, खबरदार पांचों भैं बहुत बड़का पाप करियो आप लोगों, यो यो गड़बड़ा है इलमाल बेस्त मैंसन वतिक निखस है नी मनी को आलत अज ये पापा है मामनो इन लीफ है सवरो खुद फुर्स लेट खुद ऑफ हैं खेफ हैं फेल लीफ द वारम द खा एल्क केर नार हैं एल खानित बैल पापा है मामा मिनो मां को मिनातें दों दर ऑफ नंगा इनातें God heeft 24 uur en hij draait de hele wereld. En jij hebt ook 24 en elke keer kom je tijd tekort. Dat betekent, planning is slecht. Jouw planning about jouw tijd is niet goed. Dus ga dat goed inplannen, beste mensen. God heb je niet gezien, maar je rent achter hem. Terwijl degene die jou heeft gebracht op deze wereld, jou gebaard heeft, jouw eten en drinken voor jou gezorgd heeft, dat is jouw papa en mama. God zegt ook, zorg goed voor je papa en mama. Dan zal ik altijd bij jou zijn. Maar als je ouders je papa en mama verwaarloos, dan moet je ook niet verwachten dat je je lauw, je edeboro, ik ga je niet helpen. He? Want mijn plaats nemen jouw ouders. Ik kan niet elke keer bij jou zijn. Daarom hebben hun mijn plaats genomen. Ik heb ze die macht, die ashirbaad, die zegen gegeven. Om dat voor jou te doen. Om voor jou te zorgen. Beste mensen. Dus vergeet je en papa en mama niet. No so yo. Fuck up helemaal, mijn brada. Sathiyon. Mijn bhajan ke madhyam se un logon ko kuch batlana chahta.

दोस्तों, आत्मविश्वास हमेशा सही होने से नहीं आता, बल्कि गलतियां करने की डर से आता है। मित्रों, जिंदगी इंसान की डर के अनुपात में सिकुड़ती या बढ़ती है। मित्रों, तो ये डर जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, बलांगर एक रोल है। मित्रों, इसे कोई खिलवाड़ ना करे। जेल्फ फर्ट्रावन कॉमनी फोर्थ एट अल्टेट खलेक है मन बेस्ट मेंशन मर एट मूत ओम फाउटन तो माकन हैट लीफन क्रिम्प्ट ऑफ ग्रुइट इन फरहोडिंग तो इमांस मूत बेस्ट मेंशन सत्यता की नाव हिलेगी डोलेगी लेकिन डूब नहीं सकती, डूब नहीं सकती। मेरा आपकी कृपा से

शुद्ध बुद्धि एक पवित्र उपहार है मित्रों, और प्रत्यक्ष बुद्धि एक वफादार सेवक। हमने एक ऐसा समाज बनाया है जो सेवक का सम्मान करता है मित्रों, और उपहार को भूल गया है मित्रों, समाज सेवा करते रहना। द सैफर फ्रस्तांत इस अनहेल खाफ एन है डायरेक्ट फ्रस्तान अंत्रव दिनार बेस्ट मैंसन वह बनन मसापेख क्रिएट दी द दिनार एर्त एंड द खाफ इस फरखेतन बेस्ट मैंसन खुद ओपलेतन वाच आलमाल दूत इन दिस वेरल एंड वाच कर्मा सेन दार मुझे खुद ओपलेतन।

0: मित्रों, आश्चर्यजनक मतलब अचानक चीज़ें उन लोगों के साथ घटित होती है जो विश्वास करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं और सीखते भी रहते हैं और आभारी रहते हैं, मतलब दंग भर भी रहते हैं। उन लोगों के साथ अचानक कुछ न कुछ हो जाता है। मित्रों, ये प्रकृति का नियम है और अपने पिछले जन्मों का यानी पुराने कर्मों का कुछ हिसाब किताब है। मित्रों, एरखबेरन खवेल्द खदिंगन में दखेन दी ब्लैफन खलोफन प्रवेरन लेरन एन दंग बार जैन बेस्त मैं सन दखाए देंगे हुँ शित खबेर दान हुकान दात हुकान दात मैं तमें बेस्त मैं सन फरखेत नीत dat je een verleden hebt, vorige leven ook. Je karma, die spelen ook een rol, die kan toch niet wegblijven, beste mensen. Dus denk hierom, denk hierom.
1: Is bhajan ke dwara, main aapko aaj ki hakikat batlane ja raha hoon. Aap ise dhyanpurvak shravan karein.

साथियों, रिश्ते कोई एग्जाम यानी परीक्षा नहीं है जिनमें आपको पास या फेल होना है, यानी बाक हो जाइयो। नहीं है तो ना ही वे कोई बाजी है मित्रों, जिसमें आपको जीतना या हारना है। ये सब नहीं है, ये एक ऐसा एहसास है मित्रों, ऐसा एहसास है जहां आप खुद से ज़्यादा किसी की परवाह करते हैं। बोलते हैं आप ना, जिसको प्यार करते हैं, तोरे लिए तो हम सब कुछ कर सकेला, बोलना तो हम आसमान के तराई भी तोड़ के लेता ही। अरे भैया, तराई तोड़ के लेते ही है तो वो तरैया से का करेगा, अचार डाली। कुछ ना करो, मदद करो, घर में उनकी मदद करो, तरकारी काटो, प्याज काटो, जो भी कुछ है मदद करते रहो, तब तो आपन मर्दांगी दिखाओ बाटे। और उल्टा औरत को भी यही बात है मित्रों, तो आप इस बात को समझे। रिलासिस एनखीन एक्सामस दियमुत हालन ऑफ नित हालन एंड खेन वेस्ट दियमुत विनन ऑफ रिलीसन बेस्ट मैंसन हेत एसन होफुल वार बै मेर ओम इमंद खीफ dann um ihr selber. Ihr seid doch stets die Mann, Frau, Freundin, Freund. Ich habe so viel Feier. Wenn ihr das Pünche bei Palche kommt, da ist der Reitiki nicht hier, die da achter ihr aufstatt. Die tut das. Beste Menschen. Das Relasi auf Liebe ist kein Spelche. Noch Prilaulau Sani. Noch so Gado Ostrafuju. Das ist nicht so mooi, Brala. Is niet zo lekker te garen naki want dan zo. Yo fasi, boom fasi, boom fasi met mijn matie.

खुशी ज्यादा रखने में नहीं है मित्रों, खुशी ज्यादा रखने में नहीं है कि हम इतना पैसा बटोर ले ली खूब खुशी है। खुशी ज्यादा देने में है तो बटोर ले लो ठीक है, मम दान पुण्य करो भी मित्रों, जाते समय कुछ ना ले जाइयो, सब यहीं रह जाएगा। बेस्ट मैसन खुलक इस नित फेल बजेतन, खुलक इस फेल खीफन गिफ्ट खीफन, ये मह बिलियनेर जैन ये मह वेतक वत जैन, मार नीच खात मी मैं जो अल्स ये दूर बिन अल्स ब्लेव थी दिस माग अन हुए कर्मा खीफ ओक अन अंदरन माग अंदरन ब्लेव als je anderen blij maakt, zal je ook gelukkig en blij gevoel hebben, beste mensen. किसी भी बात को व्यक्तिगत ना लें। दूसरे जो कुछ भी करते हैं वे आपकी वजह से नहीं होता है मित्रों, दूसरे जो कहते हैं वो उनकी अपनी असलियत का अंदाजा है, अंदाजा होता है मित्रों। आप अपना सपना पूरा करें अपनी रिश्तों पर, अपना पूरा करें मित्रों, जो आप करना चाहते हैं जिससे आप खुशी होंगे वो करते रहिए। नेम नीट्स परसों लक्स बेस्ट मैंसन नीट्स वत अंदरंदून इस फन वी हो अनोदे सो वत अंदरन जैखन इस एन प्रोजेक्सी फन एन एगन रियलिटेट। Beste mensen, je vervult je droom op je eigen voorwaarden. Dus vervul jouw mooie dromen zeker, maar doe het op jouw manier. Doe het op jouw manier en dan zal je ook plezier van beleven, beste mensen. Samen, samen se, is dunia mein, har ek desh mein, koi na koi aapatti यानि बाढ़ तूफान बीमारी इत्यादि होते ही रहते हैं, तो हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए,

प्यारे प्यारे बच्चों, साथियों, हम सब का एक अतीत होता है, मतलब एक फरलीदन तैत हम सभी को है। हम सब ने ऐसे फैसले लिए हैं जो शायद सबसे अच्छे नहीं रहे होंगे। मित्रों, सभी लोग कभी कभी गलत फैसला भी ले चुके हैं, हम भी शायद। हम में से कोई भी पूरी तरह से मासूम नहीं है, अनस्कूलक नहीं है, आप भी नहीं, आपकी बात नहीं, आपके पीछे वाला जो खड़े उनके बात है मित्रों। लेकिन हर दिन हमें कल से बेहतर इंसान बनने का एक नया मौका मिलता है। भगवान हमको रोज एक नया मौका देवे है अच्छा इंसान बनने के लिए, मगर आप तो अच्छा इंसान बनना ही नहीं चाहते हो, हैं? चंडाल बनना चाहते हो, खबरदार है, फंसो अब, हैं? आपके बात नहीं है, हम आपके नहीं बोल रहे, वो पीछे जो खड़ा है, देखे जो रोमैन लेके देखा ताकत है, वो के बात हम बोल रहे थे। बस द मैंसन वह बाल माल अनफरलीडन वह बन आल माल कोशिश कमात दी मिसकी नित बेस्त वारन ई ओ एक ओ इधर इन बेस्त में से निमंत फन ओंस इस फॉलीडर ओंस खुल्द यूसरिफ ई नित मी ओ नित दस मर वह क्रेकन एल्क दाग नी वो कांस ओम एन बेटर मेंस द जेन dat we gisteren waren, beste mensen. Wat we gisteren waren, was goed. Maar probeer vandaag het beter te doen. Elke keer iets beter te doen, beste mensen. En dan kan je van je leven blijven genieten zoals nu. Maar je kan meer genieten, beste mensen.

मित्रों, प्रेम वही होता है जहां अपने सुख और स्वार्थ की गंध भी नहीं होती। यही अमृतवाणी गोपाल परदेसी बाबा आपको बतलाते हैं।

जो होता है वो ठीक ही होता है, बेठीक होता ही नहीं। इसलिए करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहना चाहिए।

सज्जनों, सब ओर से विमुख होने पर भक्त अपने में ही अपने प्रियतम भगवान को पा लेता है।

प्यारे प्यारे भाई बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, ये मेरी अंतर आत्मा की आवाज है कि ये भजन रूपी संदेश एवं मेरे विचारों को आप बार बार बार बार अपने जीवन में उतार कर प्रभु की भक्ति में लीन रहें, और मेरे दुनिया से जाने के बाद भी ये भजन रूपी संदेश आप सभी से जुड़ा रहे। मैं आप सभी से ऐसी कामना रखता हूँ। इस भजन रूपी संदेश को आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें, बिल्कुल ध्यान पूर्वक श्रवण करें। मैं आपका अपना ही गोपाल परदे

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सुनने वालों, सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं संजय, जो आपके साथ जुड़ गए हैं, कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करूंगा और कुछ सुंदर सुंदर भजनों के साथ। जो बीमार है, भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिसके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है, उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है, उन्हें बहुत सा हैप्पी बर्थडे। जो अपने तैयारी कर रहे हैं कुछ शिक्षा दीक्षा लेने और देने को, तो उनको भी माता सरस्वती को ओर से शुभकामनाएं प्रस्तुत है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी के ओर, तो उनको ओर से ये कहना चाहूंगा, हर बार की तरह की गांधी जी को भूलना नहीं। ये मत सोचना कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सोच जा आपको रहेंगे, तो ये अगर मैं आपसे ज्यादा ना कह दूं, तो ये जरूर स्पर्श है कि आप अपना समय पे पेंशन को प्राप्त कर सकेंगे।

सुनो लो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सा दोहा हम सबके लिए लिख गए हैं। और तुलसीदास कह गए हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान।

इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, अहंकार और लालच भरे हुए है, तब तक एक ज्ञानी पंडित और एक मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों समान होते हैं।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं और एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

स्वस्ति माहौल के हवास में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हमारे सभी कर्मचारियों जो हमारे सभी कोलेग खास होते हैं उनके ओर से एक सुंदर सा भजन के ओर बढ़ेंगे। भजन का बोल दो तीन है जिंदगी।

आई जगत में काई करो, यानी कहने के तात्पर्य ये है, हम जगत में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाए जिसे हमें हाँ कोई बाद में कुछ बातचीत करके, ऐसा ना हो कि हमारा जो कर्म किए हमने वो कर्म ऐसा है जिसके बारे में लोग नेगेटिव बात करते रहे। दोस्तों सुन लो वालों, बातचीत, बातचीत ये दो शब्द ही है, पर की जाए तो दिलों को कई मैल धुल जाते हैं। एक सुंदर सा भजन और हम चलाने वाले हैं जो हमारे स्टूडियो यानी फाउन रेडियो का सभी कोलेगास की ओर से।

स्वस्ति मिश्रा के आवाज में ये सुंदर सा भजन कि तेरी शुक्रिया है सुबह की पहली प्रणाम कि हे ईश्वर आपकी कृपा से एक नया सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। आपकी आभार हूँ मेरे सभी मित्रों और सभी संबंधियों, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु को प्राप्त करे। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं सुनने वालों, और ये भजन भी सभी को खास हमारे डायरेक्टर कुमार घिराव जी के ओर से, जॉनी सुरजबाली जी के ओर से, शांता खेमाई, रजेश बदलू, राजन द्वारका, प्रदीप फेराई, विजंती नाथू, रोसिता गिरजा सिंह, सुरेन भगवान दीन, बबली आसरा, रोमियो हाउस, संजय भगवंत, गंगा चंद्र जी और यूसुफ सीतु, बीबी साहिबा रहीम बख्श जी, श्याम पूरन, अनुराधा चंद्र जी और राजेंद्र सिंह हैन और अनिल सरजुग जी के ओर से ये सुंदर सा भजन।

जब कुछ समझ में ना आए तो सीताराम गाइए। और यही संदेश, जो सुंदर सा संदेश हमारे फाहुन का सभी कोलेगास की ओर से रखा गया, और एक मैसेज जो उत्तम नगर भारत से आया है, ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है। और संदेश ये है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। तो ये सुंदर सा संदेश भाई ईश्वर जी जो उत्तम नगर भारत से और ये संदेश को भेजे हैं, एक बार और उसे दोहरा दिया जाता है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। एक और सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

होगा वही जो राम ने लिखा है। ये सुंदर सा भजन हम सब सुने अजय तिवारी के आवाज में। सुन वालों, हमारे पास मोहन गार्डन भारत से भी एक और मैसेज आए है कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। ये सुंदर सा मैसेज श्रीमती सुनील जी जो मोहन गार्डन से भेजे है। बहुत खुशी के कार्यक्रम को अन्य और स्थानों पे भी सुना जाता है। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और एक और सुंदर सा भजन के ओर बढ़ रहे हैं।

जय किशोरी और सोनू निगम के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने जो हमारे देश में सफर करने को आए हैं। हार्दिक से स्वागत किया जाता है और कहना ये चाहूँगा कि हमारे देश में हॉलैंड में कितने मंदिरों हैं, जैसे कि डेन हाग में राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर जो हर रविवार को और लगाया जाता है शाम में 2 बजे से 5 बजे तक, मंगलवार को राधे कृष्ण मंदिर जो 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, सेवाधाम मंदिर जो डेन हाग शहर में वो भी शाम को लगाया जाता है हर रविवार को, और इसी प्रकार से सुतमेर शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि हर मंगलवार को लगाया जाता है 6 बजे से 8 बजे तक, दमेरन शहर उत्तराखंड में गणेश मंदिर जो भी हर मंगलवार को 4 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, इसी तरह से अलमेर में विष्णु मंदिर जिसे हम गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं वो भी हर रविवार को 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। ऐसे भी हम लोग के देश में जो सुंदर सुंदर मंदिरों का स्थान है जहाँ पर हम सब जाकर के सत्संग आदि कर सकते हैं और कथन वहाँ हर अलग मंदिर दिन पे कथा को और जो व्यास भगवान का प्रार्थना पूजन आराधना किया जाता है संदेश को रखा जाता है। रोटरडम शहर में शिव मंदिर और शिव मंदिर अरनहेम में भी हर रविवार को जो सुबह में रोटरडम में और सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, और अरनहेम में जो कि 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। हम एक और भजन की ओर बढ़ेंगे, राधा रानी का चरण जो कि चित्रलेखा जी के आवाज में रखने वाले हैं।

राधा रानी के चरण प्यारी प्यारी, चित्रलेखा जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम एक और मैसेज जो प्रदीप जी जो उत्तम नगर से हमारे लिए भेजे हैं, और ये मैसेज का बोल ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव और समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। तो भाई प्रदीप जी को बहुत सा और नमन करता हूँ, और ये सुंदर सा संदेश रेडियो पर रख दिया गया। हम एक और सुंदर से भजन की ओर बढ़ेंगे। सुनने वालों, जया किशोरी जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन।

सुनने वालों, मैं संजय आपके साथ जुड़े हुए और ये दावा के साथ कह रहा हूं कि आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं। एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं संजय, क्योंकि पुलिंग स्त्रीलिंग में तो कभी गलती भी हो जाता है। विश यू अ वेरी गुड डे।

अगर आपका दिन एक शुभ दिन हो, यही आशा लेकर हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जुड़ गए हैं।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुनाह है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी, ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यश में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं। तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

वीडियो में तो थोड़ा बटन ज्यादा लेफ्ट की ओर घुमा दिया था या राइट की ओर पता नहीं, पर लाल जल रहा था। आप अपना रेडियो का बटन किस ओर घुमा रहे हैं, बस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।

सुंदर संगीत जो निकाला गया एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे सुनने वालों, और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम शेष दर्शन स्थापन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फाहुन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे।

0: वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

पास आऊंगा। कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला सा प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है।

ग्रेट सॉन्ग हल्लो, जिसमें काम किए रामचरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं।

आर्यन खान और राशमिका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने यह संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधा दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से और रहे और दूसरा जो अटूट विश्व।

तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर ने ये फिल्म में काम किए। दोस्तों सुनने वालों, मैं आपके साथ कुछ समय तक और व्यतीत करूंगा। एक और सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए हैं, क्यों ना उस ओर बढ़ते हैं कि मुझको तुमसे प्यार हुआ।

इमरान हाशमी ने फिल्म में काम किए। दोस्तों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, 2400 घंटा आपके साथ, जो हम सब जुड़े रहते हैं, हमारे सभी कोलेगा साथी अपने अपने समय पे और यहाँ उपस्थित होकर के कार्यक्रम को रखते हैं। किसी ने मेरे पास ये संदेश को भेजा है कि हद से ज़्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। तो आप खुद समझदार हो, समझ जाना क्या संदेश देना चाहते हैं। जो व्यक्ति ने हमें हमारे पास ये संदेश को भेजा है, एम फी नाम है उनका, हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।

0: जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। रूबरू मिलने की इच्छा करता है लेकिन शब्दों से ही बयां करता हूँ। आज के मेरे फाउन हिंदुस्तानी के रेडियो के श्रोता गणों को यानी राजेंद्र सिंह का हार्दिक नमस्कार और अभिनंदन। आज का जो प्रोग्राम है उसके विषय में हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में और पितृपक्ष के समय के बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हमारे रिसर्चर हैं, बहुत गहरे गहरे से खोज खोज के लाते हैं और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो शांता जी, आप कुछ कहना चाह रही है?
1: हाँ जी राजेंद्र जी, जाना था हमसे दूर, जाना था हमसे दूर, बहाने बना लिए, अब तुमने कितने दूर ठिकाने बना लिए। मेरी आवाज़ के सुनने वालों, सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम। और यहाँ से जैसे राजेंद्र जी कहा कि आज की ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम यहाँ से हम लेकर उपस्थित हो गई है,
0: तो क्यों ना शांता जी, जिनका दिल उदास है उसके लिए, उनके लिए कोई एक भजन चलाया जाए।
1: हाँ बिल्कुल, यहाँ से चला दे।
0: उदासी मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार।

0: राजेंद्र जी, राम जी का और जो कृपा है तो जरूर हम सब पे है। सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए शांता जी, ये बताइए कि क्या आज का विषय है?
1: जैसे हमने बताई शुरुआत में, तो आज के विषय है पितर पक्ष के बारे में। तो उसी के विषय में हम आप सबको यहाँ तैयारी करी है और यहाँ से हम अपने सुनने वालों को पहुँचाएंगे, बताएंगे कि पितर पक्ष के बारे में और उसके क्या सब सुविधा कर सकते हैं।
0: राजेंद्र जी, अगर जब देखा जाए कि जब ये त्योहारों में एक त्योहार, ये पितृ का त्योहार जब आ जाता है ना
2: जी,
0: लोग पंडितों को फोन करने लगते हैं और पूछने लगते हैं, खास करके जिनका परिवार में हाल ही में कोई गुजरे हुए है, तो वो पूछने लगते हैं कि क्या मैं ये पार्व श्राद्ध जो है, पितृपक्ष जो हम सुरिनामी में कहते हैं ना, तो उसे उसमें हम अपने पितरों के लिए कुछ कर सकते हैं? ये प्रश्न हर बार आता है और हर बार पंडितों जनों से ये बढ़िया से संदेश दिया जाता है, पर उसके अंतर्गत में आज हम लोग के कुछ और जानकारी मिल सके तो बड़ा बढ़िया होता।
2: आज बहुत सारी जानकारी इसी बारे में है, इसीलिए ये प्रोग्राम में आज ये चीज़ रखे हैं। पितरों के लिए इसी समय जो समय है वो ही समय कर सकते हैं।
0: पर राजेंद्र जी, बात ये हो जाता है, लोग मांगते हैं करने को
2: जी,
0: यहाँ पर ये भी संदेश हो जाता है कि कभी काल के कोई ऐसे बात करते हैं कि मैं अपने पितरों के अंतर्गत कुछ करना चाहते हूँ। पितरों है जो इस समय जो दुनिया को छोड़ चले गए, जिनके कृपा से हम लोगन है,
2: हाँ।
0: यानी कि हमारे पितरों का नाम, तो ऐसा जब देखा जाए तो आजकल लोग से पूछा जाए कि भाई पिता का नाम, तो शायद पिता का नाम सभी जानते होंगे, पर पिता का नाम, वृत्त पिता का नाम, ये तो बस मुश्किल होने लगता है।
2: हाँ।
0: और यहाँ तक तो हम यह नहीं कहने वाले हैं कि जो बीच भारत को छोड़ करके और सुरिनाम 150 साल पहले गए थे, उतना दूर तो दूर की बात है। लोग अपना खुद का गोत्र और अपना खुद का पितृ का नाम गमन, यानी कि उस पर चिंता ही नहीं करते, और पितृ दोष जब लगते हैं तो औरों से जा करके कितना लूटे जाते हैं, उसके बारे में तो आज कोई चर्चा नहीं होगा। चर्चा बस यही के बारे में होगा कि हम क्या कर सकते हैं अपने पितरों के अंतर्गत।
2: जरूर, लेकिन जब आपने ये बोल ही लिया कि अपने पितरों के नाम याद होना चाहिए, तो जब आप भारत में जाते हैं तीर्थ यात्रा में, जैसे हरिद्वार है और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जहाँ भी जो धाम है, वहाँ पे जब भी आपके कोई पिछले पितर गए होंगे, लोग गए होंगे, आपके दादा परदादा कोई भी गए होंगे, तो वहाँ से वो खाता होता है एक पंडितों के पास, इतना बड़ा खाता,
0: पंडा के,
2: पंडा,
0: हाँ,
2: तो पंडा के पास सब लिखा रहता है कि आपके जितने लोग यात्रा गए वहाँ पे गए, वो पूरा रजिस्ट्रेशन रहता है उनके पास, आपका दादा का नाम ये था, परदादा का नाम, इसका नाम, उसका नाम, उसके उसका नाम, मैंने खुद जाके देखा है। तो जब गए वो डेट लिखी रहती कब गए थे वो, तो उन्होंने क्या क्या कराया था वहाँ पे पितृ पक्ष के लिए और क्या कराया था, सब चीज लिखा रहता है
0: उसमें, मिल जाता है,
2: उसमें मिल जाता है, खाता पंडित पंडा के पास।
0: इस बात पे ध्यान देना कि आप, हम लोग कार्यक्रम बनाते हैं ज्योति का प्रकाश, और इसमें जरूर कुछ ना कुछ अपना जीवन के ज्योति के अंतर्गत में कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, उसमें और प्रकाश जरूर आएगा। और जब आप अपना पुरखों का अपना, और जैसे कि भाई राजेंद्र जी जो हम सबको संदेश दे रहा कि कहाँ पर आप जा करके उसका और अपना, यानी कि पितरों तथा अपने पुरखों के बारे में, अपने गोत्र के बारे में पा सकते हैं। राजेंद्र जी, देखते हैं कि शांता जी पिटारा से क्या भर के लाए हैं।
2: जरूर शांता जी,
0: हम सब पर
2: अपना पिटारा, तो शांता जी का पिटारा तो हमने यहाँ सेट कर रखा है।
1: राजेंद्र जी सभी सेट करके रखिए, अभी आपको सुनाएगा
2: जी।

0: माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता। तो जैसा कि अभी सुन रहे थे संजय जी का प्रोग्राम कि उन्होंने क्या खाया नहीं खाया, लेकिन वो नहीं पता चल पाया अभी तक। संजय जी बताइए कि आपने खाया क्या है।
1: राजेंद्र जी, बताने का दिल है पर खाने का दिल भी और है, तो अभी जरूर बताएंगे कि क्या। और आज का समय थोड़ा निकल गया था, अभी उसके बारे में और चर्चा किया जाएगा।
0: जरूर।
1: आज हमारा विषय है राजेंद्र जी, जो कि पर्व श्राद्ध अंतर्गत, और उसके बारे में हम सबको कुछ जानकारी को हम लोग लेकर आए हैं दोस्तों, और देखेंगे कि क्या हम सबके लिए और हमारे विशेषज्ञ लोग तैयार करके रखे हुए हैं।
0: हाँ जरूर।
1: तो राजेंद्र जी, आपके पास क्या संदेश है?
0: सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि पितृ चरण में नमन करी, ध्यान धरी दिन रात, कृपा दृष्टि हम पर करी, सिर पर धरे दो हाथ।
1: सिर पर धरे दो हाथ। तो राजेंद्र जी, पितृ
0: दो हाथ नहीं, सिर पर धर दे हाथ।
1: हाँ,
0: धर दे,
1: तो वो पितरों ऐसा अपने पुत्रों के कर सकते हैं।
0: हाँ, पितरों का जो आशीर्वाद होता है वो पुत्रों पे बहुत लगता है, उसी आशीर्वाद से सब लोग बहुत फूलते फलते हैं।
1: पर राजेंद्र जी, ऐसा होता है लोग तो डरते हैं अपने पितरों के कार्य करने के लिए।
0: नहीं, डरना नहीं है पितरों कार्य करने।
1: वो कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि भाई मैं अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहते हूँ, और जरूर करने का इच्छा भी रखते होंगे, पर उसमें ये प्रश्न करते हैं कि भाई अगर जब मैं ये करूँगा तो मेरे बच्चों को ये भी करना पड़ेंगे।
0: तो आगे बढ़ते हैं इसी में, ये कदम्ब है आपका, ये कुटुंब है आपका, आपका परिवार, आपके आशीर्वाद से फले फूले संसार। तो पितरों के आशीर्वाद से तो हम लोग हैं, तो कैसे डरने का विषय है।
1: पर लोग तो डरते हैं।
0: किस बात से डरते हैं?
1: और खास करके राजेंद्र जी, मैं तो देखा हूँ कि कहीं पे गए थे, कहीं पे गए थे, किसी का मृत्यु हो गया था, तो वहाँ हम लोग सत्संग करते हैं ना, तो जाकर के रामायण पाठ कहीं और गरुड़ पुराण पाठ होता है, तो वहाँ गए तो वहाँ लाइट ऑफ हो गया।
0: हो,
1: अब लाइट ऑफ हो गया, कैसे लाइट ऑफ हुआ ये पता नहीं है, पर लोग डर गए। जैसे ये पितर के बात होता है इसमें, या लाइट के बात होता
0: नहीं,
1: है
0: नहीं, इसमें पितर का बात है,
1: के बात होता है,
0: इलेक्ट्रिसिटी की बात है। हो सकता है उस समय लाइट चली गई हो, या कुछ ड्रिप हो गया हो, ट्रिप हो गया हो, तो उसका पितर का कोई बात नहीं।
1: और राजेंद्र जी, बात ये भी है कि ये कार्यक्रम जो चल रहे हैं, आज का विषय रखा गया है, तो इसमें भी संदेह है कि पितर और प्रेत, इसका अंतर क्या है? तो अभी ये हम सबको भी सुनने को मिलने वाले हैं। तो और आ चुके हैं
0: सांड्रा जी
1: आ करके पहुंच गए हैं स्टूडियो में,
0: तो
1: भूल कि क्या हम सबके लिए।
0: तो दो लाइन और पितरों के बारे में कह देते हैं। भूल चूक सब क्षमा करी, करी मेहर भरपूर, सुख संपत्ति से घर भरे, कष्ट करे सब दूर। तो क्यों ना एक छोटा सा हम भजन चला दें।

0: अवनित हित परिवार, तो पितरों के समान आज हमारे बीच सांड्रा जी भी उपस्थित हुई हैं। तो आप कुछ सुना है कि बहुत बढ़िया चीज लेके आई हैं। सांड्रा जी बताइए।
1: आप सबको मेरा भी नमस्कार। तो एक लाइन मैं भी बोलना चाहती हूँ।
0: जरूर।
1: पितरों के लिए, आप हमारे हृदय में, आपके हम संतान, आपके नाम से हैं जुड़े मेरे हर पहचान। आपके ऋण बढ़े सदा, नहीं चुके जाए सात जन्म भी हम पढ़े, वेद पुराण बताए। तो आप बताइए राजेंद्र जी, मैंने क्या कहा?
0: आपने वेद पुराण की बात कही, क्या बात? और आपने क्या कहा?
1: मैंने कहा कि आप हमारे हृदय में हैं।
0: आप हृदय में हैं, पुराण में
1: संतान, आपसे जुड़े हैं, आपकी पहचान है, पितरों से हमारा पहचान है। ये ऋण बढ़े सदा, नहीं चुकाए जाए सात जन्म भी हम पढ़े, वेद पुराण बताए।
0: हाँ, आपने बताया कि जो पितरों के जो हम पे ऋण हैं वो नहीं चुकाया जा सकता है, अगर सात जन्म भी लें तब भी नहीं चुकाया जा सकता है। बहुत अच्छा आपने जो बताया है। बढ़ते हैं आगे कि पितरों के समान और क्या क्या चीज़ें हैं। तो तीन वृक्ष, तीन पक्षी, तीन पशु और तीन जलचर। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का पितृलोक चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। धर्मलोक के अनुसार माना गया है। और दूसरी ओर अग्निहोत्र कर्म से आकाशमंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। पक्षियों के लोक को भी पितृलोक कहा जाता है। तो जहाँ पे पक्षी उड़ते हैं वो लोग उस लोक को पितृलोक कहते हैं। तीसरी ओर कुछ पितर हमारे वरुण देव का आश्रय लेते हैं।
2: राजेंद्र जी, जैसे कि आपने कह रहे हैं कि पक्षी,
0: हाँ,
2: तो खास करके मैं कुछ फिल्मों में देखे हैं और व्हाट्सएप बरेख पे भी भेजा जाता है कि कोई प्रकार के पक्षी भी होता है जिसे, और ये पितृ पक्ष यानी कि पर्वश्राद्ध में उसे कुछ खाने पीने के दिया जाता है।
0: कौवा, कौवा,
2: वो कौवा होता है, तो उससे,
0: हाँ, कौवा की बात अभी हम आगे आने वाली है,
2: आने वाले।
0: अतः पितरों की स्थिति जल में भी बताई गई है। वरुण देव जल के देवता हैं और पितरों की स्थिति जल में भी बताई गई है। तीन वृक्ष की सबसे पहले बात करेंगे। पीपल का जो वृक्ष है, पीपल का वृक्ष बहुत पवित्र है। एक ओर इसमें जहाँ विष्णु का निवास है वहीं यह वृक्ष रूप में पितृदेव हैं। पितृपक्ष में इसकी उपासना करना या इसे लगाना विशेष शुभ होता है। और दूसरा नंबर है बरगद का वृक्ष। आगे का संदेश बरगद का वृक्ष है। बरगद के वृक्ष में साक्षात शिव निवास करते हैं। अगर ऐसा लगता है कि पितरों की मुक्ति नहीं हुई है तो बरगद के नीचे बैठकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और जो तीसरा वृक्ष है वो है बेल का वृक्ष। बेल आप जानते हैं?
1: बेल वृक्ष, बेल का पत्र
2: जो शिव जी पे चढ़ाया
1: जाता है, शिव जी पे चढ़ाया जाता है,
2: बेल पत्र
1: पे चढ़ाया जाए।
0: बेल पत्र होता है पत्ता और बेल पत्थर होता है फल।
2: फल,
0: हाँ, उसको पत्थर, वो पत्थर जैसा मजबूत
2: बड़े बड़े।
1: राजेंद्र जी, हम लोग बात कर रहे हैं बेल ब्रादरे के।
0: बेल ब्रादरे,
1: या
0: यदि पितृपक्ष में शिव जी को अत्यंत प्रिय बेल का वृक्ष लगाया जाए तो अतृप्त आत्मा को शांति मिलती है। जिसकी आत्मा को शांति न मिले वो बेल के वृक्ष लगाने से मिल जाती है। अमावस्या के दिन शिव जी को बेल पत्र और गंगा जल अर्पित करने से सभी पितरों को मुक्ति मिल जाती है।
3: अगर सोने, अगर जैसे आपने कहा राजेंद्र जी कि अमावस्या के रोज अगर पितर पक्ष जो में अगर आपको मौका नहीं मिला करने के लिए कि कोई हालत जैसे हो, तो अमावस्या के रोज आप कर सकते हैं जी।
0: और इसके अलावा अशोक, तुलसी, समी और केले के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए।
1: हाँ जी, केले में तो साक्षात विष्णु भगवान निवास करते हैं।
0: हाँ, केले का वृक्ष भगवान विष्णु का ही है।
2: आगे चलते हैं राजेंद्र जी, क्योंकि संदेश ज्योति का प्रकाश में यही लक्ष्य रखा जाता है कि कुछ ना कुछ संदेश हम सबको प्राप्त होए। जैसे कि पता है कि शांता जी भी कुछ सुंदर सुंदर गीतों को लेकर भी आए हैं, तो देखते हैं राजेंद्र जी क्यों ना एक गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर हाँ। आगे हम सब कार्यक्रम बढ़ाने वाले हैं।
0: जरूर, जरूर।

0: राजेंद्र जी, कहा जाता है कि ईश्वर दुनिया के सबसे बड़ा और डॉक्टर है। प्रार्थना दुनिया के सबसे बड़ी दवा है। तो आगे का कार्यक्रम में आप क्या सुनाने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर और दवा के बारे में तो हमें जानकारी मिल गया है, पर ये आज का विषय जो रखा गया है, ये श्राद्ध अंतर्गत कौन सा संदेश, क्योंकि शांता जी भी तैयार हो गया है नीदरलैंड्स में कुछ हम सबको सुनाने के लिए। और कार्यक्रम में जो अब हमारे कैसे कहा गया था,
1: मिस सेंड्रा
0: भी है, और मिस सेंड्रा से आग्रह करूंगा कि आप क्या लेकर आए हैं, आगे सुनाइए।
2: हाँ जी, मेरे पास भी दो लाइनें बची हुई है कविता के। हर दिन हर पल आपसे मांगे ये वरदान, वंश भले बताते रहे बढ़े मान सम्मान। ये पितरों से होता है। घर पिंडे में आप विराजे ये ही अरज करे, कहत भक्त हम शरण आपके निस दिन महर करे, ओम पितर पितरायने नमो नमः।
0: तो राजेंद्र जी, सांद्रा जी काफी चतुर है और सामान लेकर आए हैं जिसे हम सबको, और काफी जानकारी छोड़ दी है हम सबके लिए।
1: हाँ, सांद्रा जी तो
3: तैयारी करके भी आई है, सुरनाम
1: जाती रहती है और पितृपक्ष के बारे में पढ़ती रहती है, तो उनको तो ज्ञान ही है।
0: ऐसा बहुत बढ़िया बात है सांद्रा जी, जो आपने भी संदेश दिए। ये पर्व श्राद्ध अंतर्गत जो पितृपक्ष से हम सब जानते हैं, इसमें कौन सा जानकारी अभी और राजेंद्र जी रखने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपसे अभी से कह देता हूँ कि शांता जी भी कुछ तैयारी करके लेकर आए हैं, और ना सिर्फ शांता जी के पिटारा में सुंदर सुंदर गीतों हम सब के लिए रहते हैं, पर शांता जी कुछ नई दलांस में लेकर के हम सब के लिए आए हैं। पर राजेंद्र जी, सब कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, पर क्यों ना आप आज कुछ संदेश और सुना देते हैं, तो फिर हम सब शांता जी की ओर बढ़ेंगे।
1: हाँ, जरूर। आगे के जो संदेश है कौवा के बारे में, कौवा को, कौवा यानी कागा
2: शनि देव के वाहन।
1: कौवे को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रय स्थल माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवा का बहुत महत्व माना गया है। इस पक्ष में कौवा को भोजन कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में स्थिर होकर विचरण कर सकती है।
0: तो राजेंद्र जी, कौवा के बारे में कुछ और हम सबको जरूर बताइए, पर हम लोग को, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर है और फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के, हम सबके जरूर समय दिए हैं कार्यक्रम करने को, पर हम लोग के कुछ परप्लेक्सिंग होते हैं और हम सब न्यूज़ की ओर पहले बढ़ते हैं। और न्यूज़,
1: हाँ, न्यूज़ से जब कौवा की बात चली गई तो एक मिनट की बात और रह गई है। जब कोरोना का समय आया तो कौवों ने एक मीटिंग करी सबने,
0: हाँ जी,
1: श्राद्ध पक्ष को देखते हुए कौवों की आपात मीटिंग बैठी। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिस घर में बूढ़े माता पिता के साथ बुरा व्यवहार होता है, उस घर के अन्न जल का बहिष्कार किया जाएगा। जो जीते जी अपने माता पिता को पाल न सके, वे मरे हुए लोगों को पितृपक्ष पितृभोग लगाने की कोशिश के काबिल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कौवों ने कैसी मीटिंग करी है, ये देखो। और लास्ट ईयर जब कोरोना के समय कौवों ने एक मीटिंग और करी थी कि भाई इस बार कौन कैसा रहेगा, क्योंकि कोरोना का समय है, इकट्ठे नहीं जाएंगे, अलग अलग सब लोग जाएंगे, तो उनकी ड्यूटी अलग अलग लगी थी कौवों की। तो संदेश हमने पिछली बार देखा था, बड़ा बढ़िया संदेश था वो भी। इस प्रकार से कौवों की बात चली थी, तो क्यों ना आगे अब न्यूज़ की ओर बढ़ा जाए और इसके बाद सारा जो वृतांत रखा जाए उसकी बात करेंगे।

0: हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9736532747। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Progressief Nederland vindt dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet verdwijnen. Kamerlid Lisa Vliegenhardt van de grootste oppositiepartij dient hiervoor vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Onder de huidige wet is abortus strafbaar, behalve bij een aantal uitzonderingen. Pro vindt echter dat het besluit over een abortus in de eerste plaats bij de vrouw zelf ligt en niet bij een arts of een strafrechter. Honderden betogers hebben vannacht in het centrum van Madrid in tenten geslapen om actie te voeren voor het recht op huisvesting. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw afgelopen week, die hierdoor het symbool is geworden van de wooncrisis in Spanje. Met de actie willen de betogers premier Sanchez onder druk zetten om zijn beloofde snelle maatregelen tegen de crisis waar te maken. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaan-oever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Ze mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd. Premier Jette zei destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand is gevlogen. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet gebruikt of opgeladen worden. Het is al de tweede keer in 1 week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
6: Vahon Hindustani Radio की न्यूज सब लोगों ने सुना, कमर्शियल भी सुना और हमारी बात चल रही थी कौवा पे, तो अब कौवा से बात खत्म करके हंस की ओर चलते हैं।
7: पर राजेंद्र जी,
6: जी
7: ऐसा कौवा तो हॉलैंड देश में है ना?
6: हाँ खूब।
7: पर सांद्रा जी, आपको तो पता होगा सूरीनाम में कौवा है कि या नहीं?
8: नहीं कौवा नहीं है, कोयल है। नहीं नहीं नहीं कोयल
7: नहीं, कोयल कोई और होता है, कौवा कुछ और होता है ना।
6: कौवा बड़ा होता है, कोयल छोटी होती है। कोयल की आवाज सुरीली होती है, कौवा की काव काव होती
8: है। कौवा बहुत काव काव करता है,
7: कौवा काव काव करता है,
6: काला कौवा काव काव करे।
7: दोस्तों ये बात है कि शरीर जल से पवित्र होता है और मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। आत्मा जब धर्म से पवित्र होता है तो राजेंद्र जी कार्यक्रम में आगे क्या संदेश है ये तो सुना दो।
6: आगे का संदेश हंस है।
7: हंस, हंस किसको कहते?
6: डक।
7: डक
8: उसे स्वान कहते हैं, वित स्वान जो सरस्वती माता,
6: हाँ हंस, हंस
7: उसको कहते हैं, हंस
6: हंस की, हंस की जो विशेषता है वो ये है कि पानी और दूध को मिला के इकट्ठे करके रख दिया जाए और हंस के सामने रख लिया जाए तो हंस उसमें से दूध दूध पी लेगा और पानी छोड़
8: देगा, पानी पानी ही रह जाएगा
6: ऐसा। उसकी चोंच में ऐसी व्यवस्था है।
9: हाँ पर हंस में फर्श के लेना,
6: हंस सरस्वती का वाहन भी है।
9: हाँ हाँ पर जो हंस हम यहाँ पे देखते हैं हॉलैंड में वो वाला नहीं,
8: नहीं।
9: अगर उसका पहचान आप जानना चाहते हो तो उसका चोंच देखना।
6: हाँ जो चोंच से पहचान होती
9: है, हंस का चोंच जो है वो लाल होता है, जो यहाँ वाली हैगा वो सब ओराये हैं, तो असली हंस जो है उसका चोंच लाल होता है, वो हंस के बात हम कर रहे हैं।
6: हाँ वही हंस है। पक्षियों में हंस एक ऐसा पक्षी है जहाँ देव आत्माएं आश्रय लेती है, यह उन आत्माओं का ठिकाना है जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं और जिन्होंने यम नियम का पालन किया है। कुछ काल तक हंस योनि में रहकर आत्मा अच्छे समय का इंतजार कर पुनः मनुष्य योनि में लौट आती है, या फिर वह देवलोक चली जाती है। हो सकता है कि आपके पितरों ने भी पुण्य कर्म किए हों।
9: और ये हंस जहाँ तक मेरी ख्याल है ये सिर्फ क्षीर सागर में होता है।
6: भगवान गरुड़ विष्णु के वाहन हैं और भगवान गरुड़ के नाम से ही गरुड़ पुराण है जिसमें श्राद्ध कर्म, स्वर्ग, नरक, पितृलोक आदि का उल्लेख मिलता है। पक्षियों में गरुड़ को बहुत ही पवित्र माना गया है। भगवान राम को मेघनाद के नागपास से मुक्ति दिलाने वाले गरुड़ का आश्रय लेते हैं। और इसके अलावा कोंच या सारस नाम का भी लिया जाता है, जो पितृपक्ष में एक कोंच और सारस का नाम भी लिया जाता है, उनको भी वो अन्न देना चाहिए उस समय।
7: तो राजेंद्र जी, कोंच ये पक्षी है या जानवर है क्या?
6: पक्षी है।
7: एक पक्षी?
6: हाँ, एक सारस होता है जो ऊपर लाइन से चलते हैं और एक क्रॉंच, क्रॉंच नहीं वो क्रॉंच, वो तो शंख।
8: हाँ शंख,
6: शंख उसमें वो क्रॉंच।
8: हाँ शंख बोले,
6: तो जो शंख जिससे निकलता है वो तो रहता है समुद्र में, मिलता है नदी में नहीं मिलता है। तो इस प्रकार तीन पशुओं की भी बात करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा हम सांता जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं नीदरलैंड में?
9: जरूर, तो यहाँ से हम आप लोगों को बता दे थोड़ा डच में, नीदरलैंड भाषा में, कि पितर पक्ष क्या होता है और किस लिए है, और तो पता है तो यहाँ से हम शुरू कर दे।
6: हाँ जरूर।
9: पितर पक्ष यार लक्ष्य दो दफर एरिंग तेईस द दोंकर हेल्फ ऑफ द मंथ सितंबर अक्टूबर वॉर द दोर सोमक हिंदूस द दो दिन हरदाग देश हरदेंकिंग वॉर्ड पितर श्राद्ध खनुम। Dit wil zeggen het offerfeest voor de gestorven voorouders. Pieter is voorouder en Paksh is de donkere maandhelft. Dat deel van de maanmaand waarin de maan afneemt. Gedurende 15 dagen wordt er aan degene die de doden herdenken een tilangeli gegeven. Dat is een offerande bestaande uit water, til. De til is sesamzaad met bloemen op een soort gras, yaniki kusha, kusha gras. Deze offerande wordt in de hand gegoten waarbij beide handen tegen elkaar worden gehouden. Anjali, de dubbel handvol. De tilanjali wordt dan op een gewijde plaats op het erf geplengd of uitgegoten. De gestorvenen worden herdacht om hun positie in de dodenrijk te verbeteren en voor hun welzijn en geluk aldaar. Tevens smeekt men zegen van de overledenen af voor de nabestaanden voor geluk, welzijn. De plaats van de gestorvenen in het dodenrijk vertegenwoordigt een heel oud geloof dat in feite in alle natuurgodsdiensten voorkomt. De overledenen gaan naar het rijk van Jum. De eerste overledene na de schepping van de mens. En sindsdien de vorst van het dodenrijk, oftewel Yamraj. Het welzijn van alle overledenen wordt in niet geringe mate bepaald door de offers van spijzen door hun levende nakomelingen. Het ritueel dat hierbij gevolgd wordt, is ook van zeer oude datum en stamt af van voor de tijd dat in de religieus denken van de Indiërs de gedachten van karma en reïncarnatie ontwikkeld werd. Karma houdt in dat de mens de loop van zijn leven bepaalt door de daden die hij verricht. Karma betekent letterlijk handeling, daad. Krachtens de daden van de mens wordt zijn leven bepaald. Reïncarnatie is wedergeboorte. Volgens deze gedachte blijft de ziel voortbestaan. Slechts het lichaam is vergankelijk. Dit is een gedachte die ook in alle godsdiensten terug te vinden is. Vandaar de dodenverering. Toen je had ik tasunewalo Dutch bhasa mein, Nederlands bhasa mein, पितर पक्ष के बारे में
7: राजेंद्र जी शांता जी ने अच्छी सुंदर सुप रूप से और नीदरलैंड्स में जे संदेश को हम सब के लिए पहुंचाए और जैसे कि हम सब अभी और भी संदेश आपके ओर से प्राप्त करने वाले हैं तो आगे का संदेश क्या है क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं और फिर उसके बारे में उसके बाद में हम सब और आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे
6: जरूर

0: तो पितृपक्ष की जैसे बात चल रही थी, आगे बढ़ते हैं, तीन पशुओं की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला है कुत्ता। कुत्ते को यम का दूत माना जाता है। कहते हैं कि इससे इधर माध्यम की वस्तुएं भी नजर आती है। कुत्ता जो है यम का दूत है, तो उसको पहले ही हो जाता है, आसार हो जाता है कि क्या होने वाला है। दरअसल कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को और ईथर माध्यम सूक्ष्म जगत की आत्माओं को देखने की क्षमता रखता है। कुत्ते को
1: आगम हो जाता है।
0: हिंदू देवता भैरव महाराज का सेवक माना जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से भी भक्त की रक्षा करते हैं। कुत्ते को रोटी देते रहने से पितरों की कृपा बनी रहती है, तो इसलिए कुत्ते को रोटी देना हर समय देना चाहिए, तो आपके पितरों की कृपा आपके बसी रहेगी। अगला है गाय। जिस तरह गाय में सभी देवी देवताओं का निवास है, उसी तरह गाय में सभी देवी और देवताओं का निवास बताया गया है। दरअसल मान्यता के अनुसार 84 लाख योनियों का सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय बनती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। गाय जो गाय माता है, कुछ लोग जानवर बोलते हैं, पशु बोलते हैं, तो गाय को पशु नहीं बोलना चाहिए, तो गाय माता का दर्जा दिया गया है।
1: हाँ राजेंद्र जी, जैसे आपने कहा था 84 लाख योनी से,
0: 84 लाख योनियों मतलब,
1: हाँ
0: हम मनुष्य की एक योनी है, ऐसे कुछ कुत्ता जानवर जो अलग अलग 84 लाख योनियों में से जब सबसे आखिरी योनि गाय की होती है,
1: हाँ।
0: वहाँ वो आत्मा कुछ समय के लिए विश्राम करती है और हाँ। इसके बाद आगे की यात्रा पे बढ़ती है।
1: अच्छा,
0: हाथी। हाथी की बात चल रही है। हाथी को हिंदू धर्म में भगवान गणेश को साक्षात रूप में माना गया है। यह इंद्र का वाहन भी है। हाथी को पूर्वजों का प्रतीक भी माना गया है। जिस दिन किसी हाथी की मृत्यु हो जाती है, उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता। हाथियों को अपना पूर्वजों की स्मृतियाँ रहती है। अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन गज पूजा विधिवत रखा जाता है। सुख समृद्धि की इच्छा रखने वाले उस दिन हाथी की पूजा करते हैं।
1: गज किसको कहते हैं?
0: गज हाथी को कहते हैं।
1: अच्छा,
0: गज मत संस्कृत में बोलते हैं ना।
1: अच्छा, गज। अच्छा,
0: इसके अलावा बराहा, बैल और चींटियों का यहाँ उल्लेख किया जाता है। जो चींटी को आटा देते हैं और छोटी छोटी सी चींटियों को चावल देते हैं चिड़ियों को, वही बैकुंठ चले जाते हैं। तो इसलिए चींटी को आटा देना चाहिए, चिड़ियों को चावल देना चाहिए। तो आगे बात करते हैं। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
2: जरूर जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं शांता जी भी कुछ तैयार कर चुके हैं कहने के। मेरे ख्याल से कुछ पिटारा से कुछ सुनाने वाले हैं अपने ओर से। पर शांता जी, यहाँ पर किसी ने ये संदेश भी भेजा है राजेंद्र जी कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सुख की ताला किसने लगाया है। तो सुख के ताला के और किसने लगाया है, इसके लिए कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है। और ज्योति का प्रकाश जिसमें आपको कुछ ना कुछ संदेश आपके लिए खोज खोज करके रखा जाता है और जिसे आपके जीवन का ज्योति जो जल रहा है उसमें थोड़ा और प्रकाश आ सके। दोस्तों, ये कार्यक्रम जो लगभग 188 देशों तक सुना जा सकता है, तो आशा यही है कि इस कार्यक्रम से कुछ ना कुछ लाभ आपको जरूर प्राप्त होए। चलो एक गीत सुन लेते हैं तो आगे बढ़ेंगे।
0: जरूर।

0: वो घर कितना सुंदर है जिस घर में पितरों का हो सत्कार। बहुत अच्छा जो भजन था, बहुत ही अच्छा भजन था शांता जी। आपने जो भजन ढूंढते हैं बड़े, उसका हम बहुत ही आभार करते हैं कि आप इतने ढूंढ ढूंढ के अच्छी चीज़ लाते हैं। हाँ, समय लगाते, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, जलचर जंतु। तीन जलचर जंतु की बात चलेगी। भगवान विष्णु ने एक बार मत्स्य का अवतार लेकर मनुष्य जाति के अस्तित्व को जल प्रलय से बचाना था। जब श्राद्ध पक्ष में चावल के लड्डू बनाए जाते हैं तो उन्हें जल में विसर्जित कर दिया जाता है। कछुआ, आगे की बात चलेगी कछुआ की।
1: तो राजेंद्र जी, कछुआ है क्या? कछुआ किसको कहते हैं?
0: कछुआ एक ऐसा होता है, ऐसा
2: स्केल पाथ
0: वो ऐसे चलता है।
1: कछुआ किसको कहते हैं शांता, अगर आप हो सके तो और बढ़िया से हम सबको बता सके।
2: स्केल पाथ।
1: हाँ, राजेंद्र जी स्केल पाथ को कहते हैं।
0: भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लेकर ही देव और असुरों के लिए मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित किया था।
2: हाँ।
0: जब भगवान ने कछुआ का अवतार लिया था और मंदराचल पर्वत अपनी पीठ पे लिया
2: जी,
3: तो समुद्र मंथन
0: और समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले
2: जी।
0: सबसे पहले हलाहल विष निकला था
2: जी,
0: जिस विष से एकदम सब लोग झुलस रहे थे, कुछ मर रहे थे। तो फिर भगवान शंकर ने अपने गले में उसको विष को रोका और वही नीलकंठ महादेव के नाम से जाने गए। हरिद्वार से थोड़ी दूरी पे एक जगह है नील का मंदिर, आपने कोई गया है?
2: हाँ, जी, हमने गए।
0: हाँ, तो वही।
1: तो संद्रा जी, आपने भी गए हैं नीलकंठ मंदिर?
3: हाँ जी, मैं गई।
1: तो वहाँ के बारे में कुछ बताइए, वहाँ का वातावरण कैसे है, वहाँ पर जा करके क्या खूबियाँ है और कैसे वहाँ पहुँचते है?
0: हाँ, कछुआ की थोड़ा सा बात खत्म कर देते है, इसके बाद संद्रा जी आप बताएंगे वहाँ के बारे में। कछुआ बहुत ही पवित्र उभयचर जंतु है जो जल की सभी गतिविधियों को जानता है।
1: अच्छा? जल की सभी गतिविधियों।
0: हाँ, कछुआ को बहुत सारे लोग अपने घर पे भी रखते हैं, कहते हैं कि कछुआ अगर घर पे रहता है तो लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए रखते हैं
1: ऐसा।
0: और तीसरा जो है नाग है। भारतीय संस्कृति में नाग की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह एक रहस्यमय जंतु है, यह भी पितरों का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा मगरमच्छ भी माना जाता है। तो बताइए जी,
1: मगरमच्छ किसको कहते हैं राजेंद्र जी?
0: मगरमच्छ जो पानी में
3: देव।
1: कि हम जरूर समझ जाते, जैसे कि राजेंद्र जी हम सबको एकदम सरनामी में जो हम सबको समझा देते हैं और सारा संदेश। राजेंद्र जी, कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा वृतांत जब सांद्रा जी हम सबको सुना दे कि उन्होंने जा करके और कौन सा स्थान पे गए थे। सांद्रा जी
3: जी, हम गए थे नीलकंठ मंदिर, वो हरिद्वार में है। पहला बात तो ये है, आप भारत जाओ और मन में लेकर जाओ कि आप जा रहे हो हरिद्वार, तो सबसे पहले मन में आता है कि शिव बाबा के दर्शन होगी और गंगा की दर्शन होगी, गंगा स्नान करेंगे। तो हम लोग तो गए थे न्यू दिल्ली से, हम लोग तो बस से गए थे और वहाँ से पैदल गए थे। तो जो मन में हो गया कि गंगा जी की दर्शन होगी, शिव जी की दर्शन होगी, तो मन तो तृप्त हो जाती है। बस ये बात सुनकर, ये बात दिल में रखकर जाओ वहाँ पर। हम तो गए थे, समर रहा, ठंड नहीं थी,
1: गर्मी के समय था,
3: बहुत था धूप बहुत था, तो हम लोग गर्मी के समय में गए थे। और गंगा में पैर रखो, गंगा इतना ठंडा है, गंगा जी
1: शीतल
3: जल, सो अनहेल खुद रिलैक्स फुल। एंड हाँ जी, हम गए मंदिर में, शिवलिंग है, शिवलिंग पर अर्पण किए, जो भी अर्पण कर पाते थे वहाँ। थोड़े थोड़े पंडितों है वहाँ पे जो मदद करती है, चीज़ें बिकती है, जो भी चढ़ाना चाहो चढ़ा लो और मन अपना तृप्त कर लो। जैसे आपने कहा, मन शुद्ध करो तो धर्म के काम कीजिए ना, मन के पवित्र करना है तो धर्म के काम कीजिए, धर्म के काम करने से मन पवित्र होता है।
2: हाँ सांद्रा जी, अपना अपना बताए, अच्छा लगा सुनने के लिए। और मेरे ख्याल से
1: सुनते सुनते ये भी मन में हो गया कि मेरा भी इच्छा हो रहा है, कब जी चले
2: और हम चले, हम चलेंगे सच में
3: फिर से।
2: हाँ हाँ, ये सांद्रा जी जो गंगा जल के बात करी ना, तो जैसे हम, मैं भी एक बार भारत जो गई तो मेरे गोड़ में बहुत सारा दर्द था, ठीक से चल नहीं पाती थी और मेरी पैर बहुत से सूजन था उसमें, और ऐसा मौका आया कि हम सब गए काशी,
1: काशी
2: काशी विश्वनाथ। तो वहाँ पे हमारे गाइड जो है हम सबको बोट में बैठा कर अलीगढ़ एक्वा की
3: दूसरे किनारे
2: किनारे हाँ, तो वहाँ से हमको कहा, हम सभी को कहा कि आप अपना पूजा करना चाहते तो करो। तो मेरे मन में यही, कभी मैं सुनी थी कि इफान गंगा जी जो आप मांगोगे जो भी करोगे मन से करोगे तो वो पूरा करती
1: है, तो माँ गंगा है।
2: और वाकई मैं गई, मैं तो स्नान की बार मैं उसमें गई गंगा में, और उससे
3: रखी आपने,
2: उससे माता से मैंने प्रार्थना की मने मन में, और सच में उसी दिन मेरी पैर अच्छी हो गई और आज तक मेरी पैर में दर्द नहीं।
0: तो सुनने वालों आपने देखा कितना बढ़िया वृतांत शांता जी ने बताया गंगा का, कि गंगा में केवल जल के स्पर्श मात्र से ही समस्त दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि गंगा जल से ऐसा नहीं होता। तो सब पॉजिटिविटी अगर जो लोग उन तरफ रहते हैं तो उनका जरूर होता है, जो नहीं रखते तो उनका मैं कह नहीं सकता,
2: होता है।
0: बहुत ही अच्छा शांता जी आपने जो
2: स्नान के, और उसमें हम स्नान के कुंभ मेला में हम गए थे, जितने दिन हुआ थी दो हफ्ते हुआ थी, रोज हम जाते स्नान करे और उसका परिवर्तन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत नहीं होता है, पर समय के अनुसार उसका परिवर्तन होता है अपने जीवन में।
1: दोस्तों ये

0: ये हम जानते हैं कि परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता है। जीवन के हर कदम पर हमारे सोच, हमारे व्यवहार एवं हमारे कर्म है हमारा भाग्य लिखते हैं। तो राजेंद्र जी, एक सुंदर सा गीत के ओर हम सब चलते हैं, फिर आगे कार्यक्रम बढ़ेंगे।
1: जरूर।

0: भरोसा करना भारी है। तो क्यों ना आगे का जो आजकल पितृपक्ष के बारे में थोड़ा सा समझ जा जाए।
1: कहने के तात्पर्य यह है दोस्तों कि देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। राजेंद्र जी, जैसे कि आप

0: हम सबके कार्यक्रम में पितृपक्ष अंतर्गत जो पर्वंश रहा थे उस अंतर्गत में और सुनाने वाले हैं, तो आगे का संदेश क्या
1: है? आगे का संदेश है कि पितरों का महत्व क्या है। संसार के समस्त धर्मों में कहा गया है कि मरने के बाद भी जीवात्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वरन वह किसी न किसी रूप में बना ही रहता है। जैसे मनुष्य कपड़ों को समय समय पर बदलते रहते हैं, उसी तरह जीव को भी शरीर बदलने पड़ते हैं। जिस प्रकार तमाम जीवन भर एक ही कपड़ा नहीं पहना जा सकता, उसी प्रकार आत्मा अनंत समय तक एक ही शरीर में नहीं ठहर सकती। न जाते मेयते वा कदाचिन्नमयी भूत्वा भवितो न भूभुवा, न जायते मित्रते वा कदाचिन्नाय भूता भवितो वा न भूपा, ऊजो नित्वा शाश्वतोम पुराणानां, हन्यते हन्यमाने शरीरः गीता। गीता के अध्याय दो के अध्याय में कहा गया है कि आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न मरती है। मरना जीवन शरीर का धर्म है। शरीर का नाश हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। विज्ञान के अनुसार कोई भी पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, वरन उसके रूप में परिवर्तित हो जाता है। व्यक्ति के संस्कार होने के बाद यही अक्षय आत्मा पितर रूप में क्रियाशील रहती है तथा अपनी अनोत्मनी के लिए प्रयास रहित रहने के साथ साथ पृथ्वी पर अपने स्वजनों एवं सुपात्रों की मदद के लिए सदैव तैयार रहती है। पितरों के प्रति श्राद्ध, उनका स्मरण एवं उचित संस्कार करने से हमें सदैव पितरों से लाभ ही लाभ मिलता है। पितर वह उच्च आत्माएं होती है जो अपने स्वभाव एवं संस्कार के कारण दूसरों की यथासंभव सहायता करती है। हिंदू धर्मों के पितरों में संदेशवाहक भी कहा गया है। शास्त्रों में लिखा है, ओम अरयम माना तृप्तताम इदम त्रिलोकम तस्मै स्वाध्याय नमः मृत्योर्मा अमृतम गमया, अर्थात अर्यम्मा पितरों के देव हैं जो सबसे श्रेष्ठ हैं। उन अर्यम्मा देव को प्रणाम करता हूँ। हे पिता महा और प्रति महा, हे माता माता महा और परमात्मा महा, आपको भी बारंबार प्रणाम है। आप हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चले। इसका अर्थ यह है कि वर्ष भर अपने देवों को समर्पित अनेकों पर्वों का आयोजन करते हैं, लेकिन हमने बहुत से लोग यह महसूस करते हैं कि हमारी प्रार्थना देवों तक नहीं पहुंच पा सक रही है। हमारे पूर्वज देवों और हमारे मध्य एक सेतु का कार्य करते हैं, और जब हमारे पितृ हमारी श्रद्धा हमारे भाव हमारे कर्मों से तृप्त हो जाते हैं, हमने हमसे संतुष्ट हो जाते हैं, तो उनके माध्यम से उनके आशीर्वाद से देवों तथा हमारी प्रार्थना बहुत ही आसानी से पहुँच जाती है और हमारे मनोवांछित फल की शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है। पितरों का सूक्ष्म जगत से संबंध होने के कारण वह अपने परिजनों स्वजनों को सतर्क करती रहती है तथा तमाम कठिनाइयों को दूर कराकर उन्हें सफलता भी दिलाती है। सामान्यतः यह सर्वसाधारण को अपनी उपस्थिति का आभास भी नहीं देते, परंतु उपयुक्त मनोवृत्ति एवं व्यक्तित्व को देखकर या उपस्थित होकर भी सहयोग एवं परामर्श देते हैं। पितरों का उद्देश्य ही अपने वंशजों को पितृवृत्त स्नेह दुलार सहयोग एवं खुशियाँ प्रदान करना है। संसार में तमाम उदाहरण उपलब्ध हैं जब इन्होंने दैवीय वरदान के रूप में मदद की है। पितरों का महत्व पितर अपने कुल से मात्र अपने प्रति श्रद्धा अपना स्मरण अपना आदर तथा अपने प्रति उच्च संस्कार ही अपेक्षा रखते हैं, और यह भी सत्य है कि उनका श्राद्ध करने के नाम उनके नाम से दान धर्म करने संस्कार करने स्मरण करने का पुण्य फल एवं यश करने वालों को ही प्राप्त होता है तथा उनका कुछ मात्र अंश ही हमारे पितरों के पास पहुंचता है। जो करता है वही भरता है, परंतु हमारे पितर जब यह देखते हैं कि मेरे कुल के लोग हमेशा प्रति कृतज्ञता का उपहार का भाव रखते हैं प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उन्हें असीम संतोष एवं सुख का अनुभव हो जाता है।
0: ऐसा होता है। तो राजेंद्र जी, आपने लगातार और हिंदी में और ऐसा संदेश सुंदर रूप से दिया, चलो सांद्रा जी भी उसे कोशिश करेंगे, उसका पूरा नहीं हो पाएगा दोस्तों।
2: नहीं, डांस भी करेगा।
3: हाँ जी, तो मैं भी यहाँ पर कुछ संदेश देना चाहती हूँ डच में, नीदरलैंड्स में। पितृ श्रद्धांजलि वट हाउ दैट इन दैट बिटेकन दैट वी गान फॉर एरन फ्रॉम द फोर ओल्डर्स एंड दैट इज अ हेल बिलोंगरेग रिचुअल फॉर द हिंदूस। हियर मे टोन ऑफ रिस्पेक्ट voor de verering van de overledene. En het is vooral zo belangrijk omdat de ziel van de overledene na de dood beschermer wordt voor het hele gezin. De verplichting aan de voorouders heet Pitre Reen. Hindoes vervullen deze verplichting door een offerplechtigheid te houden genaamd de Shraad. Shraad wordt meestal gehouden in Pitrepaksha. Voor de ouders, indien al overleden. Alleen voor de overledene ouders wordt deze Shraad gedaan. Ouders, grootouders en overgrootouders of voor alle voorouders. Aan hun ouders hebben Hindoes een ereschuld, zolang die nog in leven zijn, want die hebben hen verzorgd en opgevoed. Mana to je pitre reen kabhi khatam nahi hota hai, lekin hum log Hindoo maan kar chalte hai ki shraad karne se kuch kam ho jata hai. Ze lossen de schuld voor het grootste deel af door hen te verzorgen als ze oud zijn geworden en niet kunnen werken. Er blijft nog een restschuld over die wordt ingelost met shraad. Door middel van jaldaan, water en melk, tildaan, maanzaad, diepdaan en het reciteren van Pitra Mantras om uw mata pita per pita op een juiste Vedische manier Sridhanjali uit. Aap pitre reen se mukt hona chahte, apne pitro ko mukti dilana chahte ho, to kuch bhi kijiye, lekin kijiye kuch.
0: Jarur, Sandra ji ne bhi sandesh diye. Rajendra ji, jaise ki sandesh mein aur हम सब सुनते आए हैं कि हमें तीन प्रकार के ऋण होता है. पहला जो पितृ ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा देव ऋण. इन तीनों पे हमें ध्यान देना है और हम सब क्या कर सकते हैं इसे अंतर्गत में, इसमें कुछ ना कुछ संदेश और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा. तो संदेश क्या है, पहले हम सब संदेश सुना देते तो फिर हम सब अगले गीत की ओर बढ़ेंगे.
1: संदेश थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है. अपने प्रियजनों की साधना सहायता के लिए वह हर संभव प्रयत्न करते हैं. पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रखने, उन्हें सद्भावना भरी श्रद्धांजलि देने तथा उनके प्रति अनुकूल भाव रखकर उनकी सहायता लेने से पीछे नहीं रहना चाहिए. परिजनों का मृतक के लिए लगातार रोना पीटना तथा शोक प्रदर्शन करने से उन्हें दुख होता है, उनकी शांति में बाधा पड़ती है. इसलिए उनकी यादों, स्मृतियों, क्रियाकलापों को सदा के लिए संजो कर रखकर हमने उनसे प्रेरणा कर लेनी चाहिए, उनकी शांति की कामना करनी चाहिए. परंतु मृतक के साथ शारीरिक मोह बंधन शीघ्र ही तोड़ लेना चाहिए. यह मानना चाहिए कि उनका रूप अवश्य बदल गया, लेकिन उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ है. परावैज्ञानिकों को अपने अनुसंधानों के दौरान अनेक साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि तमाम पितरों ने समय समय पर अपने आत्मियों की कठिनाइयों की सहायता की है तथा उसका उचित मार्गदर्शन भी किया है. कहीं यह नज़र नहीं आई, कहीं उनकी आवाज़ सुनाई पड़ी और कहीं यह स्पष्ट आभास हुआ है कि कोई परलौकिक शक्ति हमारी मददगार बनी. प्रसन्न हमारा उनके प्रति श्रद्धा, विश्वास एवं कठिनाइयों में उनका स्मरण करने का है. हमें अपने पितरों के प्रति वैसे ही श्रद्धा भावना रखनी चाहिए जैसे हम प्रभु के प्रति रखते हैं. संसार में सभी धर्मों एवं सभ्यताओं में पितरों के प्रति कर्तव्य पूरा करने को कहा गया है. अनेक धर्मों में अलग अलग रीतियों की पितृ पूजन एवं श्राद्ध पर्व धर्म की परंपरा प्रचलित है. पितरों को स्थूल सहायता नहीं परंतु सूक्ष्म भावात्मक सहयोग एवं श्रद्धा मात्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह सूक्ष्म शरीर में ही रहते हैं तथा प्रसन्न होने पर यह पितर बदलने की प्रेरणा, शक्ति, सहयोग, मार्गदर्शन एवं सफलता प्रदान करते हैं. यही आज का जो संदेश था पितृपक्षों के समय का, यही संदेश रहा. अब हम चाहेंगे कि एक छोटा सा भजन चलाया जाए, जिस प्रकार दूजे की बात मानी जाए. तो फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे.

माँ बाप की नज़र में सर को पकड़ के रोके। बहुत ही अच्छा जो भजन था वैदिक नित्य कर्म विधि का, बहुत अच्छा भजन रहा। अब हमारा समय बढ़ता है आगे की ओर, तो संजय जी अब हम लोगों को वही गाना याद आता कि लागे छूटे ना अब तो सनम। जैसे ही मोहम्मद रफ़ी का ये गाना और लता मंगेशकर जी का गाना आता है, सब लोगों को पता चलता है कि हम लोगों का समय अपनी सीमा पे पहुंच चुका है और हम विदा लेने वाले हैं। तो समय तो कभी किसी के लिए रुकता नहीं, विदा तो लेना ही पड़ेगा। क्यों ना वही गाना लागी छूटे ना सनम अब तो सनम चलाया जाए।

हाँ, हिंदुस्तानी रेडियो को सुनने वालों, जैसे कि ये गाना शुरू होता है और हम लोगों का विदा लेने का समय होता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं को जिन्होंने हमें इतना प्यार से सुना। और आज के जो कार्यक्रम रहा पितृपक्ष के बारे में, सब लोगों ने सुना, मनन किया, बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली बार इसी दिन इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार। यानी सेवक राजेंद्र सिंह का नमस्कार, धन्यवाद।

सास मिटा तलाश मिटा, मिट गया उम्मीदें भी, सब मिट गया पर जो ना मिट सका वो है याद तेरी। सुने वालों, इसी वाणी के साथ आपको सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम। आपको एक शुभ दिवस होवे।

0: लेना।
1: जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, बस यही जिंदगी है। दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्ति पे आकर पहुँचे हैं। आशा यही है कि कुछ न कुछ संदेश आपके लिए इसमें जरूर लाभदायक निकले और हम सब अगले सप्ताह कार्यक्रम लेकर फिर उपस्थित रहेंगे। आज के कार्यक्रम में सहयोग देने वाले शांता खेमई जी और सांद्रा जी और हमारे पैनल के पीछे राजेंद्र सिंह जी और मैं हूँ आपका सेवक संजय। नमस्कार कहता हूँ।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फान के सुनने वालों को हमारा राम राम, नमस्कार, प्यार भरिए नाम, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है और वो है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

इथा रोबी उदित नारायण का ये सॉन्ग है हमारे दोस्तों, जो आपको हमने बस सुनाई दिए हैं। हम और आगे को चलते हैं अपना प्रोग्राम की लेकर हमारे यारो, हमारे दोस्तों। अब देखो भैया, एक बरिश के बिटिया बेबी, भैया एक बरिश के सी एक आसन बेबी, एक बरिश के लड़का सूरीनाम में बुढ़ के मर गए भाई। तो बोलिए जॉनी उतो ना गए हुई पौड़े तिस्खीन खरपन से इंदर दांत उपौड़े ना गए, बाकी एक बल्टी पानी में बिचारी गिर गए और ओमा ये लड़का बिचारी मर गए है। बहुत दुख के बात है तमाम राजो फाहुन के ग्रुप इसके दुख में हम शामिल है। इन यार हमें जो बुधवार के अपन घरे एक बल्टी पानी में गिर गए है। ये बात हुए क्वाकार स्त्रात में श्री नाम है, ये फ्रांसी ईखन के गोसा स्त्रात है और बोले फॉर नोमन वॉर के एक बरिश के लड़का बुढ़ के मर गए बल्टी में भैया। अब खैफत मोनाबली से इन वास्तरइंट वार In met water gevulde de emmer stond. Vermoedelijk probeerde zij iets uit de emmer te pakken en viel op een larkenke mooie de kyo bhaiya. Ek bariske larka apan zindagi mein bichari kaun chiu dekhe raha. Aur wo gujar gaye hai bhaiya, gujar gaye hai. Aur bahut bahut dukh ke baat hai hamare pyare pyare pyare janta. Ab dekho ego nahi khantin yaar ke guman ke ladki laash ho gayi Suriname mein mausi. 19 बरिस के लड़के लाश होई गए सूरीनाम के बांचित हुए हैं, जेकर नाम बा लेडीज अनाबेल बालसेंदे मार्टिनेस इन सूरीनाम। बताए गए है का 3 महीना होई गए ये लड़कियां लाश होई गए हैं, परिवार बड़ी दुख में है और सब एक मिलजुल के खोजे है। द मुदर हिप शेख में आंद्र नोट ओप्रो खवेंट में नियो और बोले हैं एक्स्ट्रा डीड इन फॉर हर बसोरक्त है इन द टेलीफोन फॉर हर डॉक्टर दिस ऑफ फॉल्स द मुदर मोमेंटेल इन हंडन सेंट फॉर अ मन दिस एन आइसोलेटेड अंडेड एज ब्लाका ओकर माई एगो अदमिक संगे कर भलाका बोले है स्टार्ट ऑफ एंकल फोटो दिस फैमिली ही फर्स्टेरक द मुदर सेग दैट हर नीट लुक हर डॉक्टर सेल्फ टू स्पीक एंड देयर इज एक्टर गेन बेवेस्टिंग दैट दिस मैन अ स्ट्राबार फेट ही प्ले की बोले ओही ना ओके लेके चल गई हुई। बोले है 2 तारीख दिसंबर से लाश भेले तो बोले हैगा खबरन ऑफ 27 दिसंबर 2006 सांटियागो द क्यूबा में और बोले फर्ट्रैक वोंदे से हर फैमिली इन सान माइकल इन पाड्रोन इन हवाना में और बोले है क्यूमान दी इन सूरीनाम वो ने इन मेंसेल्स के क्यूबा के आदमी ढेर सूरीनाम में रहे भैया। और ये सब चीज तो होता है, दुख के बात है। 19 बरस की बिटिया कोई लाश हुई भैया, तो बहुत बहुत दुख के बात। अब देखो भैया डीजे फ्राई खलातन मेंसन स्मोकल के बात हुई आदमी के नाम बा डीजे ना बजे वाला नानी एकर नमुए है डीजे एरएस सिपाही बोले है बसवार खमा तेगे फेर्दर फ्राइहेट फेज मनीमिंग अडवोकेट जॉन मौरी ने पतवा है भैया। बताई गई है 16 तारीख सितंबर के बोले के पकड़ी से अंदर में मेंशन स्मोकल एंड मेंशन हैंडल के बारे में बोले हैगा ये रमिया करत रहा और जाने मेंशन हैंडल के बारे में कैसे हमारे जनता हम जाई रेसलान भैया रेसलान बदमाशी करे बहुत दिन से पूते नवा बोली ला नानी उग्रहीनर पैदा गए अब ऊ अपन प्लेन उड़ावे भैया जो नाटो हैगा नाटो के ओम खैफिंग में उड़ावे कहने पोलैंड के खरेंज पे उड़ाई से और का बोले हैगा अब यहां बतावे स्विस एंड फिंस खफेक फ्लिक्टेकन से डोंडरदग उठखरे ओम रूसीसे मिलिटेयर लुकफार्टेकन तो अंडरस्केपन मेल द फिंस लुक्टमा दी फ्लोग बोवे द इंटरनेशनल वाटर फ्रॉम द फिंस गोल्फ उस सब गए ले स्वीडन को फिनलैंड के बोले है गए को ग्रुप रशी से तो स्टेलन स्टेलन फास्ट दैट इट किंग ओम ए मेदर गेवेक्ट फ्लिक्टेग एंड द ट्रांसपोर्ट फ्लिक्टेग स्वीडन जो ने फिनलैंड है गा बेने हम लोग के नाफो लेते हैं वर्कन सामन ओम ए लुक ट्राइम द फरदीगन एक अरबाने में फिनलैंड बोले इस तक के द लैंड गसामलिक सो इन आइडेंटिफिकेशन मिशन uitvoerde meerdere नाफो लैंड इन ओस्ट एंड ओस्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ ओस्ट यूरोपा हैव इन afgelopen maanden melding gemaakt Rusland schending in de luchtruim और हम मांगले जाने हम लोग के फेयर लीडर जो हैगा और मार्क रुटो एक बारे में क्या बोले हैं
कहीं ना एक बारे में बोलत रहा। अब देखो भैया 6.6 मिलियार्ड यूरो के बारे में उक्राइन के सबन फ्राई करे से एयू और भरी के नानी हम लोग के बालास्टिंग वहां भरीगा। शुक्रवार के से स्टेम करे से के उक्राइन के 6.6 मिलियार्ड फ्राई करे से मिलिटेर अंडरस्टैंड करे से जो रसलान से लाए हुए हैं एयू एयू एयू बैटलांस शेफ काया Kalas op X het geld om komt vrij uit de Europese vredesfaciliteit EPF's kebare mee. Orbole 4,7 miljard is bedoeld voor de EU-landen. Zelf waarvan sommige landen volgens hun volgend Kalas hebben aangegeven. Toch maar jenta aplukkuhum. Bas samachar sunate hi rehte hai. हमारे जनता आप जोन आदमी यानी कि बैटलांत में है अमेरिका में है तो मंगे सूरीनाम के पासपोर्ट तो हुआ जाए के बनवाई सके है यहां बतावे सूरीनामर दी इन बैटलांत एंड क्राइकन अ न्यू मोखलकाइट ओम हिन पासपोर्ट साकन अफ द हैंडलन और बोले प्रेसिडेंट सिमोन बुधवार के न्यूयॉर्क में पासपोर्ट में बोली से बोले हैगा Application service officieel gelanceerde dienstverlening moet het aanvragen van een Surinaamse paspoort toegankelijker en efficiënter maken, terwijl de beoordeling, goedkeuring en de uitgifte volledig onder verantwoordelijkheid van de overheid blijven. Dus toch Surinaamse paspoort mag je vanuit New York meer, dat is het nu wel mogelijk van afgelopen woensdag. Bolle paspoort blijft Surinaamse staatsdocument, ambitie reikt verder naar New York. बहुत लंबा चौड़ा लिखल जनता इसके बारे में आप जानियो मंगियो जाने कैसे हम न्यूयॉर्क में बनावे सूरीनाम के पासपोर्ट दान मुझे यूली एवं तोह एवं ऑफ द वेबसाइट फॉर ओवरहेड खान सूरीनाम के कर्जा भैया प्लाफोन हबड़ा कर दे इसे नानी प्लाफोन वहां हबड़ा कर दे इसे स्टार्टस्कूल फॉर सूरीनाम यूनी 2026 में Bolle daalt eraan, maar blijft ruim boven een wettelijke plafond van 60% van het bruto binnenlandse product. Volgens de wettelijke berekening bedroeg de schuld van 119,6% van de BBP. BBP kan met lepen, je traat ook inkomsten, dus waarom aanwe he. Je traat export, oze, jada toke namake kardalewekke. Bakke is op deze pahile bouters getijd pe plafond wa overschrijden kardera is op pin kardera is bhaiya. कर्जुआ बहुत जबरजा है और ओसे समन द्विंगी करे कुर्सुआ बचावे के मैं कर्जुआ तो सबके चाहिए भरे के जो श्री नाम से इकोनोम बोले हैं मेल की देर तक तो बुलेटिन है द स्कूल्ड ने फॉलोइंग द वेटलक डी डेफिनेशन मार्च 2000 मार्च में नॉक 121,1% लागर यूनि में बोले 119,6% और बोले फॉलोइंग द इंटरनेशनल Die daalde de staatsschuld in dezelfde periode van 76,6%. De koets economie van Suriname kan aanplukken. Want de economie van Suriname gaat niet goed, mensen. Gaat niet goed. Op de kop van Suriname. Maar ja, net toen je net charo bagel koeke dukandare. Ze hebben een wachter. Dare bij ja, Nikeri ke oor hem jaila nani. Nikeri mego dukan ke naam ba. Freddy वेख में हुआ पे गो वाक्तर के हाथ गोड़ बान के सुता है रहा चोर भाई निकेरी खलेत आन हो दें बोले द खवेलदार खबरूफिंग बे द विंकल सा बोले हेगा आगो 45 यार के बेजी तेंद रूफ वेर्द वाक्तर गेकनीक वल अख्तर गलांतिन terwijl de dader er met een groot geld wat de Surinaamse dollar vandoor ging op het eigen diefstal met geweld 7-8 september gebaantje te weer recherche pakkelie ze om te zoetje Nikeri behoed veilig bijna Nikeri hem jij laat veilig voelen karela leken hem deko Nikeri me kahoe legal he ibaan te wegen seiraan weg Nikeri en vervolgens aangehouden hem ja pakkelie he paiswa geld werd niet bij hem aangetrokken ट्रॉफन पैसवा ना पैसे भैया तो पैसवा कहीं होलोल खोद के गाड़ देले हुई मौसी तो कहां से तू पये उ बोलिए हम जहलिया काट ले आबे तो फिर मौज कर तो
ये बातचीत है हमारे प्यारे प्यारे सूरीनाम की जनता, हम जाना झीनी झीनी बिजनवती।

हुई गे भैया पतरा हुई गे छोटा हुई गे है तो झीनी झीनी के बाद अभी आप लोग को और कुछ न कुछ हम बताएंगे लेकिन हम चलते हैं सूरीनाम में तुलों जानो है रोमानो मेरिबा के बारे में। बन रहा भाई कितना दिनी बाउतर्स के भैया क्लाइन जोन है और ये बन रहा रूफ में और कौन ची के जब जोने से में बेकर जाने बाउथर्स जब बनल है प्रेसिडेंट एक छोड़वा दे रहा भैया हाथ अब रोमानो मेरिबा बन गे रहा ले भैया एनडीपी में मकी अब ये रमिया ना तफरीद रहा एनडीपी में नानी अजय तू एनडीपी में ता तफरीद बाटे ना मुझे वत खंदून तो ये रमिया कांकरी से रोमानो मेरिबा बोले एगो पिन धर दी से बोले अब हम एनडीपी के लेते ना बाटी वुजदाग 23 सितंबर के ये अपन लेत माचखाप एनडीपी के बोले हम ओमा से बोले हम अपन इन ट्रैक कर ले बाटी बोले trafas de dat mel trafas de bole mer hiba heeps en besluis schriftelijk kenbaar maken die zijn NDP voorzitter Jennifer Gerling Simon president op bole in zijn brief benadrukte hij dat zijn vertrek niet ter gevolg is van ruzie onvrede of een persoonlijk geschil met de voorzitter of andere leden van partijleiding bole volgens mer hiba gaat om een persoonlijke beslissing waarover hij goed heeft nagedacht al bole ondanks zijn vertrek spreekt hij waardering uit de periode op het aanwezig hij merhiba niet kerken van je omdat ik kijk op positie hoe zie naar Millelabai hij is de pleegzoon van Weilen ook president van de voormalige NDB voorzitter Nancy Bouters zijn verleden kwam meerdere keren in de nieuws van weken strafzaken 2005 met Pandra Bariske Jalpaila voor onder mijn roofkaler uit Janse Mare op Bouters 2011 met een gratie verlinker 2017 met volgde opnieuw een veroordeling oordeling op die 3,5 jaar kan je helpen bij een roof of verpaal. Op de afgelopen jaren probeerde men hierbij nadrukkelijk een andere weg in te slaan. In 2023 behaalde hij zijn bachelor. Kinesie kon je bij je patana, bolle halker is op bolle mangela banyad mee bare bolle hega politieke vorming kreeg in zich beschikbaar willen stellen wanneer de partij een beroep op hem zou doen. To bhaiya ietra ikerba पब्लिक फादर जो रहा और वो है बहुत से के छोड़वा दे रहा उतरा जान मारी से और वो भैया एनडीपी में इतोखरा लेत बन गया रहा और तुझे ये इतना बड़का क्रिमिनल के अख्तर खरोन जो ने भाई तुझे यो के लेत मत छाप देवे हम जाने ला फोर्स इतन बहुत के प्लीज सुन है देन इज ऑलस कुक एंड ए मेंस सो गांत इन सूरीनाम एनमाल हम जाएले भैया ब्राजीलियन के मछली के मछली ना बरैया के और नानी तीन गो मिंदर आरख लड़कन मंगरवार के जोन बरैया काटी सो के ब्राजील के भैया ऊंच नाई छेती से हर ने तो स्ट्रांड के मानचित हुए नानी एगो बोले दुई बरिस के एगो 12 बरिस के को 14 बरिस के लड़का के काटी से भैया एम्बुलेंस सबके ले गए है बताए गए हैगा ऑपरेटर ऑफ एन खराब मशीन ओपे ट्रेन बेचक रहा काम करे में और बोले तेजे ने वर्क समय क्वाम द बेयन फ्री जिस कहीं पे लुका रहा और खराब मशीन काम कर द बरैया उद्यान भैया हुए पे तीन गो लड़कन रहा बोले दी ऑफ द सेल्फ द ट्रेन ओनर वेयर द फॉरवर्कर डोर एंड बेयन आंगवालन और बताए गए है का द बेयन दिस वेयर में इन इन गेस्काकल तो ई लड़कन भैया बड़ा अफसोस के मान थे चिकन हाउस में है अब होप करेला से बढ़िया जाए दिस किंडर में से अनस्कूलड किंडर दी नेक्स्ट हैव गदान अब देखो भैया 6 jonge Surinamers geven plastic vervuiling een gezicht in 6 story dump is een itra bige plastic भैया तो अब लेके छोगलुंडे इकर बारे में काम करे है मशीन खवेर एंड मास्कर्स इन ऑटो बेरा ग्रासाल्को 6 verdachte हुआ सब पकड़ी से दोस्तों हमारा समाचार धीरे-धीरे खत्म होने को हुआ है एक दो समाचार आप लोग को और हम बताएंगे SLM क्रेक फ्रॉम दिसंबर वेयर फ्लिक टेक फॉर द फॉर लीडर इन eigen kleuren
Middellandse Atlantische route mee. Simon spreekt bij VN over de dreigende boskap van de landbouw en herstel. Betalingen van de slavernij. Israël, de premier Benjamin Netanyahu, heeft in zijn toespraak tijdens een plenaire debat aan de algemene vergadering van de VN eens te meer Israëlische oorlogsdoelen herhaald, mensen. Tot Sapkooi, Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva, Mangerwaneke B, algemene vergadering door een Amerikaan, scherp uitlaat, Kariziga, Bollehega, ook een verkiezing door Charter in oktober, kebabole, buitenlandse inmenging, Omama, Lula die zich kandidaat stelt voor de vierde ambtenaarstermijn, zei de Brazilië niet zal toestaan dat de buitenlandse of binnenlandse actoren de volkswil ondermijnen. De Braziliaanse democratie van de Brazilianen verklaarde hij tegenover de wereldleiders in VN-mensen. Toejeba, de menorat agenten die fout in gaan riskeren ons laag bij jou te bekenden. Bakita bosa van een bahute jabarikare henani. Bahute jabarikare he. Keke pakario or keke na pakario.

और आँच में जाके पता चला है कि चोली के पीछे क्या होता है। चोली के पीछे दिल होता है दोस्तों, और दिल तो सबके पास होता है, लेकिन किसी को उजला

और तो ये आपका कौन सा दिल है आपको खुद मालूम होगा, लेकिन ये चोली के पीछे और कुछ दिल है दोस्तों। तो यहां से हम अगला और हॉट वन और कुछ नाचने स्विंग के गीत हम आपको सुनाते हैं। क्या है

और नमकीन हो गई है, नमकीन हो गई है वो, और पानी पानी का ये सॉन्ग थे हमारी यारो, और हम चलते हैं अगला अगला हॉट वन सॉन्ग की ओर। और वो क्या है, वो क्या है, चोली के बात, चोली के बात क्या आता है, क्या आता है।

और गुपचुप गुपचुप गुपचुप गुपचुप क्या होता है, गुपचुप में बहुत कुछ होता है। और जाए के और सो गए किसी और जगह जहां पान नहीं सोना था।

और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते हैं और गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस करे।

छम्मा छम्मा कौन है, किसका नाम है छम्मा छम्मा, और छम्मा छम्मा के बाद तो हम और आगे चलते हैं, और वो क्या है।

0: और 9 NT मारे बे रेडियो फन हैप्पी ऑल टेट N3 सेंसेशन
1: एक निशान से चढ़ता है
0: ऑन रेडियो फन।

वो नींद के मारे में क्या क्या होता है दोस्तों, कुछ गलत मत कर देना, नींद में बहुत कुछ हो जाता।

और अलामंग सुकु सुकु और कोंची सुकु सुकु भैया प्यार के सुकु सुकु के बातचीत हो रहा है हमारे सुनने वालों। एक बार फिर करते हैं जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और आपके प्रोग्राम बनाना है आपके लिए हमारा काम, यही है हमारा प्यार का पैगाम। तो उसके बाद हम चलते हैं कि मेहनी लगा के रखना।

लगी है तेरी हाँ तेरू मेहनी कब लगते है जब शादी होता है ते। तो धर्मेंद्र सिंह ने आपको इस गीत को गाकर सुनाए हैं दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं। और आजकल भी बहुत योपी पोपी है, और वो कौन सा गाना है? शेकिंग बेबी शेकिंग।

केक या आम भी शेके शेके कर रहा है दोस्तों। तो आप हमारा प्रोग्राम को सुनते रहते, कुछ रिमिक्स बैठक गाना सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं। तो आज हम आप लोग को पूरा एक घंटा कुछ हिंदी रिमिक्स सॉन्ग भी सुनाएंगे और बीच बीच में और कुछ सुनाएंगे। आओ चला जाए, सुना जाए ये कौन सा गीत है।

और क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर तुम लगती हो, के बाद हम जाते हैं कि मेरे नसीब में क्या है यारो।

थी नहीं दोस्तों, कुछ रीमेक सॉन्ग आज हम आप लोग को भिन्न सुनाएंगे। ओल्ड एंड गोल्ड रीमेक्स में कैसे लोग गाए हैं और मिसी को बजाए हैं, तो हम और अगला गीत की ओर चलते हैं।

0: पुष्पेंद्र इटावा।
1: और दोस्तों रीमेक सॉन्ग के मूड में आज है, तो हम चलते हैं। तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, और यो अरे भैया तू तू है वही जो वही दिल से जिसे अपना कहा। तो ये गीत तो हम प्लेयर पे रख चुके थे, लेकिन अब पता है कि कुछ और चलेंगे। जैसे हमने यहाँ देखते हैं कि ये गीत में कुछ तरी से कुछ आ गया है, लेकिन हम जहाँ काम होता है वहाँ तो कुछ होता है। सुना जाए।
2: 4008 9 5।
3: हेलो,
2: अकेले हो? दोस्ती करोगे?

ने जिसे अपना कहा हमारे यारो और कुछ रीमेक सॉन्ग आप लोग को ये घंटा हम सुनाएंगे। तो यारो इसके बाद हम चलते हैं एक और दिए यानी कि रीमेक सॉन्ग की ओर।

0: बाजार ठाणी बाजार
1: और उड़नी उड़ के जनचियो तो माँ कुछ और मजा है कि सजना है मुझे।

0: आपने बहुत अच्छा शॉट दिया।
1: थैंक यू। मेरे लिए तो ये सब एक ख्वाब जैसा है।
0: ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, पर ये

हौड़ी जो भी हो दोस्तों, आंची अंप को झुमाएंगे और नचाएंगे भी हम और जगाएंगे भी हम।

और ये सब गीत से, और ये सब गीत से आदमी लोग के गर्मी लग जाता है। प्यार के गीत है और प्यार के मूड में आज हैं, तो हम और अगला गीत की ओर जाते हैं। और वो है, जब किसी को जब आप प्यार करते हैं तो आपको क्या दिखना, क्या दिखते हैं आपकी आंखों के आगे, आपके नज़र के आगे क्या आ जाते हैं। जब अगर सचमुच किसी को प्यार जे आप करते हो तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए।

दोस्तों आज आप लोग को हम ओनली लवली सॉन्ग सुनाएंगे। हम चलते हैं जग घुमाए गब घुमाए की ओर, हम चलते हैं एक प्यार भरी लवली सॉन्ग राहत फतेह अली खान।

0: जगे घूमता जैसा तुम्हारा और क्या क्या है दोस्तों, तो हम आची फिर से और प्यार की मूड में हैं। चलते हैं तेरी मेरी क्या है, चला जाए।
1: शादी हो रही है मेरी, हो सके तो भूल जाना।
2: ऐसे कैसे भूल सकूं तुम्हें, प्यार छोटा नहीं है।

0: और आंखें भरी भरी और मुस्कुराने की बात करते हो तो वो कैसे होगा हमारे यारो। और दोस्तों तो एक गीत हम और आप लोग को, ये है प्यार भरी नगमों की बहार, प्रोग्राम ख्वाबों का तू है और क्या।
1: राहों में लम्हे रुक जाए, ऐसे ही टूट के दिल तुझको चाहे, फिर से उन यादों के पुर्जे उड़ा रहा हूँ, फिर से तेरा रह गुजर।

ख्वाबों का तू है रे गुजर रे तो दोस्तों हम प्यार की मूड में आँच हम हैं ते तो यारो हम चलते हैं एक गीत की ओर।

यारों, प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से करते आ रहा हूँ, वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ, कि आज गालो मुस्कुरालो, फ्रॉम द मूवी ललकार 1927, कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी। कि आज गालो मुस्कुरालो, महफिले सजालो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा, जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं कि हैव टू नॉट ऑल दैट लीफ, कंधे से कंधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे हमारे साप्ताहिक प्रोग्राम सरनामी संगीत का, और उसके बाद कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, बीच में कुछ ज्ञान की बातें है, शेर शायरी भी है। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। रवि साहब जी हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत

मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तो हमारे प्रिय प्रिय साथियों, तैयार हो जाइए सुनने के लिए एक अति सुंदर प्रोग्राम, खास करके सरनामी संगीत का। और आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ हमारे सूरीनाम देश का महान गायक, बैठक गाना का एक जबरदस्त गुरु, महागुरु। और सेमी क्लासिकल के क्षेत्र पर अगर हम बात करें तो ये एक भी जबरदस्त उस्ताद था, माहिर था सेमी क्लासिकल ग्रुप। और जो बनाया था यार, शस्त्र में बहुत ही चलता था अपने भाई और अपने पिताजी के साथ। जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का, जिस पे हमें नाज है और गर्व है, इंटरनेशनल कलाकार, द वन एंड ओनली उस्ताद का उस्ताद श्री रॉबी उदित राम जी। एक जबरदस्त क्लासिक सेमी क्लासिकल सॉन्ग सुन जाने जा अपने ही स्टाइल में और अपने ही मीठी आवाज़ में, आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

उस्तादों का उस्ताद और महान गायक हमारे इस सूरीनाम देश का द ग्रेट रॉबी उदित राम जी। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है हमारे प्रिय प्रिय साथियों, जोर तोर से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं। अगला बयान एक बिल्कुल नया सॉन्ग है और वो सुनाने को जा रहे हैं एक और जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार उस्तादों का उस्ताद पंडित क्रिस राम खेलावन जी का बिल्कुल नया सॉन्ग कोबरा जैक के साथ कि पैसा ही क्या चीज है यार, वो द पैसा सॉन्ग न्यू न्यू न्यू उस्ताद क्रिस राम खेलावन जी आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम एंजॉय।

आप सभी को महान गायक हमारे सूरीनाम देश का उस्ताद का उस्ताद पंडित श्री कृष राम खेलावन जी टुगेदर विद कोबरा जैक। और ये श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि ये नगमा कल रिलीज किया गया है। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का उस्ताद रविंदर भोला सिंह जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं कुछ युक्त लिफ्ट के बारे में, यानी कि बचपन के प्यार।

0: शाबाश शाबाश, जबरदस्त गायक हमारे इस जमाने का, फ्रॉम द सूरीनाम देश, हम लोग का अपना देश का ये महान गायक रविंद्र भोला सिंह जी। अगला बयान सुनाने को जा रहे एक और जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का, जो अपने जवानी में और जाते जाते तक भी गाता था, ये जबरदस्त उस्ताद बकेंत हुआ धोबिया मर जाइए से, महान गायक और एक जबरदस्त बैठक गाना का महागुरु और यारों का यार जिगरी दोस्त भाई राजू शिव गुलाम जी सुनाते हैं कि नदी नारा बहे।
1: ए भुजनिया काहे करना देर करत हो रे, इतना बड़ा नदिया में इतना

și ustarul ca ustar, mangaică, de great, veilen, radio ziuculangi. अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं, एक और जबरदस्त गाने वाली हमारे सूरीनाम देश का बैठक गाना का क्वीन और चटनी क्वीन द ग्रेट मोतीमाला भोला सिंह जी, एक सेमी क्लासिकल स्टाइल भजन आप सुनिए, ये महान गानी गाने वाली की ब्यूटीफुल आवाज में, कि भजो हंसा हरी का नाम

अंश महान गाने वाली हमारे सूरीनाम देश का द ग्रेट बैठ गण का एक गुरु माँ श्रीमती मोतीमाला भोला सिंह जी। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, वक्त हो चुका है ना कुछ ज्ञान के बातें हो जाए। पुराने जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने मनुष्य के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं यारो, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। ये अशोमेध लेकर कि इन बातों से कुछ ना कुछ तो हम लोग जरूर सीखेंगे, तो जरा गौर फरमाए। अर्ज किया है श्री योहान आन थीरंस, है वॉज फ्रांस जूर्नलिस्ट सैटिरिकस एंड स्क्राइबर, लीव्ड वन 1937 तक 2000। और योहान आन थीरंस ने कहा है मनुष्य के बारे में, एस एन लॉन्डन वार द मेन्स सेंट्रल स्टार्ट फॉर हेट एक्सक्यूटी पेलेटोन। आगे में कहा है श्री जॉन डॉन Engels schrijver 1572-1631, oh John Donne, ne kaha hai manushya ke bare mein yaro ki

एकदम शाबाश शाबाश शाबाश। महान गायक हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड देश का आईडीआर सही तख्त उस्तादों का उस्ताद श्री देसी रघु सिंह जी। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड देश का आईडीआर 70-80 en geboren in het Race district van ons Nieuw Nigerica, Renewala Aur Mahan Gaik, Maestro T. Sanaten, Lergei, Lergei, Lergei Reed.

एकदम शाबाश शाबाश शाबाश जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का उस्ताद टी सनातन जी के जबरदस्त आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने श्रवण किए। अगला बयान एक जबरदस्त गाने वाली हमारे सूरीनाम देश हॉलैंड देश का बैठक गाना का गुरु माँ और द चटनी क्वीन फ्रॉम हॉलैंड श्रीमती बिजानवती चैतू जी बचना पियो हमारे गली क्या बात है। एंजॉय द म्यूजिक।

शाबाश जबरदस्त गाने वाली सुरिनामदेश हॉलैंडिस का उस्तादीन बिजान वती चैतू जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। तकरीबन बोनस ट्रैक फॉर यूली आखिरी सॉन्ग बैठक गाने का जो ये पहला अध्याय है और वो सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को एक और महान गायक बैठक गाना का महागुरु also born in raised district Nikeri उस्ताद का उस्ताद और हमारे आचार्य जी श्री सत्यानंद रेखा जी का जबरदस्त सॉन्ग छोड़ के बजरिया।

0: अंश महान गायक हमारे सुरिनाम देश हॉलैंडीज का श्री आचार्य सत्यानंद रेखा जी के जबरदस्त आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। तो हमारे प्रिय श्रोताओं, यही तक था आज का पहला अध्याय हमारे सुरिनाम संगीत का, खास करके बैठक गाना का अध्याय जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद में प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो ये आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। आफ्टर द ब्रेक कहीं जाना मत।
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio.
6: Radio Fahon.
7: Digitale radio. Fahonfm.nl.
8: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen Adil Q, die verdacht wordt van de moord op de 59-jarige Karin bij station Nieuw-Vennep eind maart. Een vrouw deed aangifte van seksuele intimidatie door de verdachte, die nog altijd zwijgt tegenover alles en iedereen. Advocaat Thijs Stapel zegt dat zijn cliënt de neiging heeft zijn kop in het zand te steken en met niemand wil praten. Aanklagers in Frankrijk eisen een straf van 2 jaar met enkelband tegen oud-minister Rachida Dati wegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault-Nissan en daarvoor 900.000 euro hebben ontvangen van een Nederlandse dochteronderneming. Daarnaast eisen aanklagers een uitsluiting van publieke ambten voor 5 jaar. De Nederlandse economie leed afgelopen zomer een verlies van 9,2 miljard euro door uitzonderlijke hitte, voornamelijk door productiviteitsverlies. Grotere landen als Italië, Duitsland en Frankrijk werden harder geraakt. Volgens Johan Geroms van Allianz Trade is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering, mede door de lage waterstand van de Rijn en onvoldoende isolatie in fabrieken. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn maandag uitgesteld nadat minister Hilde Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Voor de medewerker werd een ambulance opgeroepen. Minister-president Matthias Diependalen stond op het punt een akkoord te bereiken. De gesprekken worden mogelijk dinsdag hervat. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.
0: तो यारो, प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से मैं करते आ रहा हूँ, कोई शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ। फ्रॉम द मूवी ललकार 1927 कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप श्रोताओं को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के आज गालो मुस्कुरा लो मैं फिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा, जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वालों के मालूम है। तो इसलिए हम लोग तो आपसे भी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं बंधु कि हैब तू नाश्ताओ तकलीफ, कंधे से कंधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है ना। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम हमारे सरनामी संगीत का, और उसके बाद कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, कुछ नए नए आवाजें, बीच में कुछ ज्ञान की बातें है, शेर शायरी है। तो ज़रूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मज़े लेते रहना, जहाँ पर भी हो, जिस हाल में हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे। रवि साहब

अवश्य एकदम उस तारों का उस्ताद और बैठक गाना का महा महा गुरु दिग्रे रॉबी उदित राम। अगला बयान एक और महान गायक हमारे सूरीनाम देश का, ऑल्सो एक जबरदस्त इंटरनेशनल कलाकार और हमारे सूरीनाम देश का शान और मान, जिस तौर तरीके से ये महान संगीतकार हमारे सूरीनाम देश का संगीत वर्ल्ड वाइड प्रमोट कर रहा है, मख्त नतीलक ओख सेखवर्द द वन एंड ओनली उस्तादों का उस्ताद और बैठक गाना का एक और जबरदस्त महान गुरु द ग्रेट ग्रेट ग्रेट पंडित श्री कृष्ण राम खेलावन जी। बहुत ही मजेदार सॉन्ग है कि बालम मुझसे रूठ के आगे सुनिए।

शाबाश शाबाश शाबाश, महान गायक हमारे सुरिनाम देश का, और बैठक गाना सेमी क्लासिकल और फिल्मी स्टाइल हो, ये सभी संगीत सभी स्टाइल का गाना गा चुका है। और जिस तौर तरीके से हम लोग का देश को ये महान संगीत का प्रमोट कर रहा है, नातुलक महान ही महान काम कर रहा है द वन एंड ओनली पंडित श्री कृष्ण राम खेलावन जी। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे सुरिनाम देश का, दी अनबेच ओक क्लासिक बैठक गाना ओक हेल हुट ऑन द डिकनी हेफ्ट, उस्ताद तुलसी मलाह जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे एक ध्रुपद।

शाबाश, जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का मोस्ट टैलेंटेड सिंगर तुलसी मलाहा जी। अगला बयान एक और मशहूर गाने वाली हमारे सूरीनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार बैठक गाना का उस्तादीन द ग्रेट मोती मालास भोला सिंह जी, भजो हंसा हरी का नाम।

Shabash, George's Ganewali, Hamare Surinam Desh Ka, The Queen and the Baithak Gana, Kya Maha Maha Guru Ma, The Great Moti Mala Bhola Singh Ji. Agla bayan ek ati sundar भजन है महान गायक उस्तादों का उस्ताद हमारे सूरीनाम देश का एक पॉपुलर सिंगर वर्ल्ड वाइड उस्तादों का उस्ताद बैठक गाना का महा महा गुरु द ग्रेट उस्तादों का उस्ताद मैस्त्रो रामदेव चैतू जी का सबसे प्यारा भजन कि कन्हैया मेरे गलियों में भी आना।

दम शाबाश शाबाश शाबाश महान गायक हमारे सुरिनाम देश का उस्तादों का उस्ताद द ग्रेट हरि शिव बालक जी। एक और जबरदस्त गाने वाली हमारे सुरिनाम देश का मैं पेश करने वाला हूँ महान गायिका हेल बरुंत आइडियार सेवतख तख्तख बैठक गाना का महागुरु माँ एक और in die tijd een van de meest gevraagde zangeressen natuurlijk. De great Annie Bodhaji. I'm a boy. Sham Tori Nazaria man.

की चाहत ना होती एवरग्रीन। किशोर कुमार आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की आरती बर्मन के साथ पर, ये टाइटल सॉन्ग नेकदीन द्रियन तख्त का अगर तुम ना होते फिल्म का नाम है। चलिए आप तत्पर हैं, आप जहाँ भी होंगे ये जो भी कर रहे होंगे आपका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको सुना रहे हैं, देखते हैं जी हाँ मैती मुकेश इस तरह से फिल्म छाया में से निकाले हैं निगदी एन सस्त 1961 का ये गीत।

मैं तो मुकेश और लता जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत। हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो फिल्म छाया में से निकाल कर सलील चौधरी के साज पर। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं वह है रफ़ी साहब की, और रफ़ी साहब का ये गीत फिल्म साजन की सहेली में से, फिल्म साजन की सहेली में से निकाले हैं उषा खन्ना के साज पर। बहुत दिन हुए ये गीत हमने भी नहीं सुने हैं, चलो मिलकर सुनते हैं ये प्यारा गीत।

बूंद सभी सितारे, ये प्यारा गीत सुनाया गया आपको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। फिल्म साजन की सहेली में से निकाल कर हमने पेश किए उषा खन्ना के साज पर। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी एक बार फिर।

लता जी और माइति मुकेश द हार्ट ऑफ अफिलियंस दोनों मिलके सुनाए हैं ये द्वैत हमने पेश किया और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। आपका हृदय से स्वागत है, आप जहाँ भी होंगे जो भी कर रहे होंगे हृदय से स्वागत करते हुए चलिए हम आपको सुना रहे हैं ये गीत।

वो प्यार के लिए जिससे हमने छोड़ दी है दुनिया, भूपेंद्र और आशा जी मिलके आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं, देखते हैं फिल्म बंदिश। फिल्म बंदिश में से निकाले हैं 1980 का ये गीत, और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ।

फिल्म हंसते जख्म में हम आपको सुनाए हैं रफी साहब और लता जी की आवाज़ में मदन मोहन के साज पर।

कितना प्यारा है ये चेहरा। उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किए। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। गीत हम तो रख दिए हैं प्लेयर में, लेकिन इसमें कितना आधा झूठ आधा सच, ये गीत के बारे में इस वक्त मुझे पता नहीं है, शायद भूल गए होंगे, लेकिन कितना सच कितने झूठ पता नहीं। लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनिए।

वाह क्या बात है, रविंद्र जैन के साज पर लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनाया गया फिल्म फ़कीरा में से निकाल कर 1976 निकली सैशन सीफन तक का ये गीत आधी सच्ची आधी झूठी। इसमें आधी सच्ची भी थी आधी झूठी, और दूध में पानी में जना कोई मलिक मान ने लिखा, लेकिन बहरहाल ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एवरग्रीन किशोर कुमार, बहुत प्यारा गीत है, सुनिए इसे। जी हाँ अवश्य सुनना, ध्यान दीजिए।

दिल है दीवाना एवरग्रीन किशोर के किशोर कुमार जी की आवाज़ में हम पेश किए हैं ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम प्लेयर में रखे हैं लेकिन हमने भी चून नहीं किए हैं। चलो सुनते हैं, साथ मिलकर सुनते हैं कि मार गए मुझे तेरी जुदाई। चलो सुनते हैं। लेकिन तख्त का ये गीत है।

नदीम श्रवण के साज पर ये गीत हमने पेश की और हमने कहा नहीं कि तीन सेशन शस्त्र जी नहीं इस फिल्म है फिल्म सेशन नहीं खंड तक का फिल्म जीत में से निकाले हैं नहीं कि तीन सेशन नहीं खंड तक का ये गीत सोनू जी और अलका जी मिलकर नदीम श्रवण के साज पर ये लोग सुनाए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं वो रवि साहब का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का साज है और फिल्म है मेरी तुलसी मैं तुलसी तेरे आंगन की। फिल्म तो आपने देखे होंगे लेकिन वो टाइटल सॉन्ग हम नहीं चलाएंगे हम कोई और गीत चलाएंगे। हम चला गए एक दूसरा गीत रफ़ी साहब का और गाना में पता चलता है यही कि बंद हुई खिड़की रफ़ी साहब को बहुत बेचैन करता है। रफ़ी साहब जानना चाहता है ये खिड़की बंद क्यों है तो सुनिए।

अच्छा तो ये बात है, बंद खिड़की रफ़ी साहब को कितना परेशान की, उन्होंने आपको बताया हो परफॉर्म ऑन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो अगर हम दोनों हाजिर हैं तो क्या ख्याल है।

तुम्हें देंगे ये शानदार गीत हम आपको सुनाए ओवर फॉन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। शानदार गीत हम पेश कर रहे हैं इस तरह से है।

ए चांद की जेबाई, रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं फिल्म छोटी सी मुलाकात में से निकाल कर निकली सेवन से हस्त का ये गीत शंकर जय किशन के साज पर। चलिए अगला गीत ये पेश करने वाले हैं वो है ये गीत, चलो देखते हैं ये प्यारा गीत। हाँ, लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर।

मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में निगदी एन सही बंद 1971 का ये गीत हमने पेश की। जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ? हाँ, सुनते हैं।

फ्रॉम द मूवी पत्थर के सनम से हमने पेश की है आशा भोसले और दमायती मुकेश जी की आवाज़ में भी आपने सुने हैं। मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ, मुझे किसी की खोज है। सुनने वालों, एक सुंदर सा गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं बंदा परवर थाम लो जिगर। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है, इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर सभी नज़र होती हैं। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर सभी की नज़र होती है, लेकिन दिल को साफ नहीं रखता जिस पर रब की नज़र होती है।

अभी आप सुन रहे थे बंदा पडवर थाम लो जिगर, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। आँखों में कयामत के काजल, चलिए मिलकर सुनते हैं

महेंद्र कपूर जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे आंखों में कयामत के काजल, फ्रॉम द मूवी किस्मत से हमने पेश किए हैं। गुजर जाती है ये खूबसूरत लम्हे मुसाफिरों की तरह, गुजर जाती है ये खूबसूरत लम्हे मुसाफिरों की तरह, यादें वही खड़ी रहती है रुके रास्तों की तरह। प्यार का मौसम है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं किशोर दा की आवाज़ में तुम बिन जाऊँ कहाँ।

अभी आप सुन रहे थे तुम बिन जाऊं कहां, ये दुनिया में आके कुछ ना फिर, चाह सनम तुमको चाह के। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी तुमसे अच्छा कौन है, इसी फिल्म से आप सुनेंगे लता जी और मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं।

अभी आप सुन रहे थे रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं, लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। चाहने से कोई चीज़ अपनी नहीं होती, चाहने से कोई चीज़ अपनी नहीं होती, हर मुस्कान के पीछे खुशी नहीं होती, पाना तो सब चाहते हैं सब कुछ, मगर कभी वक्त तो कभी किस्मत साथ नहीं होती।

इसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी हमराज से हमने पेश किए हैं। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, मैं कहती हूँ जो अपने होते हैं वो झुकने ही नहीं देते। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी राजकुमार से हम पेश करते हैं।

तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, मोहम्मद रफी जी आपको सुना रहे थे फ्रॉम द मूवी राजकुमार से हमने पेश किए हैं। इतने बुरे तो नहीं थे, इतने बुरे तो नहीं थे जितने इल्ज़ाम लगाई लोगों ने, कुछ किस्मत ख़राब थी कुछ आग लगाई लोगों ने, तुमने पुकारा और हम चले आए।

अभी आप सुन रहे थे तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। घर तुम भुला ना दोगे, सपने ये सच्चे होंगे, हम तुम जुदा ना होंगे। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले कुछ मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, और वो ये है, जवाब तो हर बात की दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाए वो लफ्ज़ों को क्या समझेंगे।

मूवी यकीन से हमने पेश किए हैं गर तुम भूला ना दोगे, आपको सुनाने वाले थे लता जी। इतना है तुमसे प्यार मुझे, फ्रॉम द मूवी सूरज से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। और जरा सा हम देखें, जी हाँ, फिल्म का नाम है सूरज और मोहम्मद रफी जी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं। चलिए ये गीत मिलकर सुनते हैं।

तुमसे प्यार मुझे मेरे राजदार। अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में, सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले थे। शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। अगर इंसान के दिल और दिमाग में बैठ जाए तो हर खूबसूरत और पाक रिश्तों की बुनियाद हिलाकर रख देता है। यह कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी दिल एक मंदिर।

0: अभी आप सुन रहे थे यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती वहावा, तुम सबको छोड़कर आ जाओ।
1: सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम टिप्स ऑफिशियल।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 3 2 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फनहाउस हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनहाउस के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फनहाउस हिंदुस्तानी रेडियो।

गीत का बोल है जताते हो चाह हमसे। अलका यज्ञिक और मोहम्मद असीस आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी आदमी खिलौना है।

अभी आप सुन रहे थे बहुत जताते हो चाह हमसे, अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज मिलकर के आपको सुनाने वाले थे। प्रेम दीवाने है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते एक बहुत सुंदर गीत है। ये आपको सुनाने वाले हैं उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक। चलिए मिलकर सुनते हैं।

फ्रॉम द मूवी प्रेम दीवाने से अभी आप सुन रहे थे मोहब्बत जिंदाबाद, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक मिरकर आपको सुनाने वाले थे। गोरे तन से सरकता जाए, फ्रॉम द मूवी अखियों से गोली मारे। चलिए मिलकर सुनते हैं ये गीत।

सोनू निगम अलका याग्निक और संजीवनी मिलकर के आपको सुनाने वाले थे। मेरा प्यार का रस सरा चखना वही मखना।

अभी आप सुन रहे थे मेरे प्यार का रस जरा चखना ओए मखना। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी। इसी फिल्म से आप सुनेंगे आई लव यू बोल दाल।

अभी आप सुन रहे थे आई लव यू बोल डाल फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी से हमने पेश किए हैं मेरे सपनों का वो राजा।

अभी आप सुन रहे थे मेरे सपनों का वो राजकुमार फ्रॉम द मूवी हेलो ब्रदर से हमने पेश किए हैं। दोस्ताना है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से आप सुनेंगे देसी गर्ल।

फ्रॉम द मूवी दोस्ताना से हमने पेश किया है सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी जी की आवाज़ में अभी आपने सुने हैं। हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ फ्रॉम द मूवी जुदाई से हम पेश करते हैं।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यू ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहुन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है दिल की गली, और आपको सुनाने वाले हैं सरा सा हम देखें ये गीत हो जाए आप सभी के वास्ते।

यहाँ पर सुन रहे थे दिल की गली। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं उसका बोल ये है, तेरे बिना ये दिल।

अभी आप सुन रहे थे तेरे बिन तेरे बिना ये दिल प्यार हो जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे मेरे रहनुमा। तेरे इश्क की गलियों से आप सुनेंगे सुनने वालों,

अभी आप सुन रहे थे तेरी यादों में। चलिए ये सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, दियो तेरी यादों में।

अभी आप सुन रहे थे दिल तेरी यादों में, एक सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। तूने नजरें झुकाई तो क्या हुआ।

हमें यहाँ पर सुन रहे थे मुझसे खफा। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है दिल तेरे साथ।

फन होम के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 2 2 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रही हूँ जिसका नाम है स्वप्न। सपने, सपने हमें क्यों आते हैं, सपने हम क्यों देखते हैं और उन सपनों का मतलब क्या है, इस सब विषय के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँगी।

स्वप्न विश्लेषण, स्वप्न की परिभाषाएं, यानी सपने कितने प्रकार के होते हैं और उसकी क्या परिभाषा है। भारतीय मत, जागृत अवस्था में हुए संस्कारों से उत्पन्न ज्ञान अवस्था का नाम ही स्वप्न है। जब हम जाग रहे होते हैं तो जो चीज़ें हम देखते हैं और जब सो जाते हैं और जो चीज़ें हमें दिखाई देती है उसी को हम सपना या स्वप्न कहते हैं। आर्सत्तु, स्वप्न नींद के समय का मस्तिष्क का जीवन है। जो आर्सत्तु एक बड़े वैज्ञानिक हुए हैं उनका मत है कि स्वप्न नींद के समय हमारे मस्तिष्क का जीवन है। ब्रिज, अवस्था शारीरिक परिणाम ही स्वप्न है। जब हमारा शरीर काम नहीं करता और हम नींद में होते हैं उसी को स्वप्न कहा जाता है। फ्राइट, नींद में मन पर क्रिया करने वाले उद्दीपकों को उनके ऊपर होने वाली प्रतिक्रिया ही स्वप्न है। कि जब नींद में होते हैं और हमारे अंदर सारी चीज़ें मस्तिष्क में चल रही होती हैं और उसी को स्वप्न का नाम दे दिया जाता है। डायलॉग आलिस, जागृत अवस्था में जिन लक्षणों के कारण सर्वाधिक प्रबल रूप में कर्ता प्रभावित होता है उस अवस्था की पूर्ण प्रवृत्ति ही स्वप्न है। स्वप्न हमारे नरक और स्वर्ग की ओर प्रवृत्त होने का बैरोमीटर है। स्वप्न दर्पण है चित्त की दशा का। ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वासना का प्रतिबिंब ही स्वप्न है। सर्वप्रथम स्वप्न ब्रह्मा जी ने देखा था। 33 देवों ने स्वप्न को शक्ति प्रदान की। स्वप्न तत्व, जिन व्यक्तियों की देह में पृथ्वी तत्व की मात्रा अधिक होती है उनका बाह्य आवरण थोड़ा कठोर, हड्डियां मजबूत और देह पर बालों की भरमार होती है। पृथ्वी तत्व तपोगुण प्रधान होता है, इसलिए ये जातक अधिक आलसी, अधिक सोने वाले, शीघ्र डर जाने वाले, देर से निर्णय लेने वाले, दीन स्वभाव वाले, अधिक मीठा खाने वाले तथा अधिक स्वप्न देखने वाले होते हैं।

सुनने वालों, अभी तक आपने सुना कि स्वप्न की परिभाषा क्या है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। मन तथा स्वप्न, यह मन कभी निष्क्रिय नहीं बैठता, कुछ ना कुछ चिंतन करता ही रहता है। स्वप्नों के विश्लेषण का कोई वैज्ञानिक नियम भी नहीं होता। लिंग, स्वभाव, वातावरण की प्रतिकूलता के अनुसार एक ही प्रकार के स्वप्न विभिन्न व्यक्तियों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालते हैं। सुनने वालों, देखो ना, जैसे हम सपने लेते हैं तो जैसे जिसका स्वभाव होता है उनके सपने भी अलग अलग होते हैं, व्यक्तियों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालते हैं। विभिन्न जातियों और देशों के लोग एक ही प्रकार के स्वप्नों की व्याख्या अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार अलग अलग प्रकार से करते हैं। स्वप्न का कोई ठीक और निश्चित कारण नहीं बताया जा सकता। अंतःकरण में संस्कारों का जो समूह एकत्र रहता है उसी में से किसी एक या अनेक का चित्र शुद्ध अथवा विकृत रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है। संस्कार अथवा चिंतन निकट वर्तमान कालीन अथवा दूर भूतकालीन भी हो सकता है। कुछ स्वप्न ऐसे भी होते हैं जो भविष्य में घटित होते देखे गए हैं। काम स्वप्नों का अंतिम फल वही होता है जो जागृत अवस्था में किए जाने वाले विषय भोग का होता है, और इसको स्वप्न दोष कहते हैं, जो एक रोग होता है।

सुनने वालों, अभी आप लोगों ने सुना स्वप्न की परिभाषा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फल समय, स्वप्नों के फल पर विचार करते समय सर्वप्रथम यह बात देखी जाती है कि स्वप्न रात्रि के या दिन के सोते समय किस भाग में देखा गया है। दिन में देखे गए स्वप्न सर्वथा अविश्वसनीय माने जाते हैं। रात्रि के समय उत्तरार्ध में देखे जाने वाले स्वप्न अधिक विश्वसनीय होते हैं और चौथे पहर में ब्रह्म मुहूर्त के निकट काल में देखे गए स्वप्न सच्चे होते हैं। रात्रि के चार पहर में देखे गए स्वप्न इस प्रकार फल देते हैं। ये तो आप सब लोग जानते हो सुनने वालों कि जब दिन में सपने देखते हैं वो ज़्यादातर सच नहीं माने जाते, और जब रात को सपने देखते हैं उनको ही हम लोग सच मानते हैं या सोचते हैं कि वो सपने ही ठीक हैं। और उसके चार पहर बताए गए हैं जो है, पहला पहर के सपने एक वर्ष में, दूसरे पहर के सपने छः मास में यानी छः महीने में, तीसरे पहर के सपने तीन मास में तीन महीने में, चौथे पहर के एक मास में यानी एक महीने में, और प्रभात के सपने तत्काल यानी प्रभात सुबह के जो सपने हम देखते हैं वो हमें तत्काल उसी समय दिखाई देते हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी कार्य की सिद्धि असिद्धि स्वप्न में देखना, कि जैसे हम में सपने जो आते हैं उनमें सिद्धि क्या है और सिद्धि क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। शैया पर बैठकर ओम हील हील शून पणे स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करके भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे देवे दवेश, हे शूलधारी, हे वृषध्वज, मैं सोता हूँ या सोती हूँ, मेरे कार्य में सिद्धि असिद्धि में कुछ भी फल हो उसे कृपा करके स्वप्न में कहिए। मैं आपकी शरण में हूँ, आप अजम्मा त्रिनेत्र ऐसे वाम विश्व रूप आप स्वप्न के अधिपति को मेरा नमस्कार है। इस मंत्र को एक बार जाप कर और पूर्व की ओर सिर करके दाहिनी करवट के बल शयन करें और स्वप्न की प्रतीक्षा करें।

दादा। सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सोने पर फल नाश। जो व्यक्ति स्वप्न देखकर फिर सो जाता है, वह मनुष्य स्वप्न से मिलने वाले शुभ अथवा अशुभ फल का भोगता नहीं होता। इसलिए शुभ स्वप्न दिखने पर बुद्धिमान पुरुष को पूर्ण नहीं सोना चाहिए और शेष रात्रि जागकर ईश्वर आराधना करते रहना चाहिए। यदि कोई पहले अशुभ स्वप्न देखे तो बाद के शुभ स्वप्न के फल को ही पाता है। बुरे स्वप्न को देखकर यदि व्यक्ति सो जाए अथवा रात्रि में ही किसी से कह दे तो बुरे स्वप्न का फल नष्ट हो जाता है। अथवा प्रातःकाल उठकर भगवान शंकर को नमस्कार कर स्वप्न फल निवृत्त के लिए प्रार्थना कर तुलसी के पौधे को जल देकर उसके सम्मुख स्वप्न को कहें अथवा अपने गुरु को स्मरण करें, तब भी बुरा स्वप्न का नाश होता है। आप तो जानते हैं कि जब हमें बुरे सपने आते हैं तो हम एक दूसरे से सुबह उठ के बातचीत करते हैं कि रात को हमने ये सपना देखा। सुनने वालों, जब हम अपना बुरा सपना किसी को बता देंगे, किसी से बातचीत कर लेंगे तो मन को एक तसल्ली मिलती है।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं कि स्वप्न तथा माया। स्वप्नों के गीत सदा अधूरे नहीं रहते, पूरे भी हुआ करते हैं। यानी कि जो हम सपने देखते हैं वो कभी अधूरे नहीं रहते, कभी कभी सच भी होते हैं सपने। ऐसी बात नहीं है सुनने वालों,

जो अपना होता है वह कभी सपना हो जाता है और जो सपना होता है वह कभी अपना हो जाता है। एक प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक फरियाड के अनुसार स्वप्न हमारी दबी हुई इच्छाओं का प्रकाशन मात्र है। विशेषता हमारी वह इच्छाएं जो समाज के भय से जागृत अवस्था में पूर्ण नहीं हो पाती स्वप्न में साकार हो जाती हैं। ये तो आप सब जानते हैं सुनने वालों। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा ये काम हो जाए वो काम हो जाए लेकिन नहीं हो पाता, और वही चीज़ें कई बार हमारे दिमाग में घूमती हैं और वो सपना बन के हमें दिखाई देने लग जाती हैं।

हृदय में दबी हुई प्रत्येक वासना स्वप्न में पूर्तिमान होकर अनेक कर्तव्य दिखाती है, किंतु उनके यह विचार एकांगी तथा अश्मातक ही ठीक है। स्वप्न की अपनी एक सांकेतिक भाषा होती है, जिसे समझने के लिए विशेष प्रकार की शब्दावली होती है। कोई दिव्य शक्ति मनुष्यों को स्वप्न के माध्यम से उनके शुभ या अशुभ भविष्य के विषय में सूचना दिया करती है। कुछ उन्हें अपनी चैतन्य आत्मा की शक्ति से प्राप्त सूचना बतलाते हैं। व्यक्ति को जब निद्रा आती है, यानी जब हम सो जाते हैं, तो उनका मन सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है। हमारे जन्म जन्मांतरों का इतिहास लिखा रहता है। हमारे शरीर में एक ऐसी नाड़ी होती है जिसमें हमारे जन्म जन्म का इतिहास लिखा रहता है। ऐसा केवल आत्मा की शक्ति के कारण ही संभव है, जो अजर अमर है। सभी जानते हैं सुनने वालों की हमारी जो आत्मा है वो तो अजर और अमर है। ये शरीर ही हम लोगों का अरे मर जाता है तो, और इसीलिए किसी प्रकार नष्ट नहीं होती। मानव देह में उपस्थित जीव आत्मा विश्वव्यापी परमात्मा की शक्ति का ही एक अंश है। उसका कभी नाश नहीं होता और वह पुराने जन्मों के संस्कारों को लेकर नए नए शरीरों में प्रकट होती रहती है। पूर्व जन्म के जो संस्कार बहुत बलवान हो और जिनकी जड़ें बहुत गहरी हो, वह इस पर जन्म में अनुकूल परिस्थितियां पाने पर पुनः याद आ जाते हैं और क्रियाशाली हो जाते हैं। जैसे हम जन्म जन्म से जन्म लेते रहते हैं, और हमारी आत्मा तो अजर अमर है और उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि जब हम दोबारा जन्म लेते हैं, कई बार वो हमारे साथ ही रहती हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। डॉक्टर कलिटन का कहना है कि नींद में जितनी गहरी होगी स्वप्न उतने ही जीवन से जुड़े होंगे। एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए हैं कलिटन मन, उनका कहना है कि स्वप्न हम जितनी गहरी नींद लेंगे सपने उतने ही जीवन से जुड़े होंगे। स्वप्न देखना भी सांस लेने जैसी स्वाभाविक क्रिया है। नींद की गहराई पूरी रात सार्थक स्वप्न ना देखकर दो घंटे के लिए ही आती है, और सारी रात सार्थक स्वप्न ना देखकर यह अनुभूतियां बहुत थोड़े समय के लिए होती हैं। अस्त व्यस्त स्वप्न अधिकतर खाने की गड़बड़ी या मादक पदार्थों के सेवन के कारण आते हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। अब हम जिक्र करेंगे तुरीय व्यवस्था। इसका मतलब है कि जो साधक, जो आदमी जागृत, स्वप्न और सुषमित इन तीनों अज्ञान अंधकार की अवस्थाओं को पृथक रूप से जान लेता है, वह ज्ञान और प्रकाश की तुरीयावस्था में प्रवेश पाता है। भगवान कृष्ण का गीता में योगी का रात्रि में भी जागते रहते रहने का संकेत इस अवस्था की ओर ही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो योगी रात को जागते हैं, ये संकेत उन्हीं की ओर है। उसमें चेतना का पूर्ण जागरण होता है, सारा अंत जगत प्रकाशित हो उठता है, अंत ज्योति से जगमगा उठता है। ऐसी महाज्योति जलने लगती है जो बिना बाती और बिना तेल के युगों युगों तक जलने की समर्था रखती है। यदि पूर्ण ज्ञान की अवस्था है तो और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। यही चमत्कारों का चमत्कार है। आप परमात्मा ही हो जाते हो, क्योंकि परमात्मा चेतना का सागर है, पूर्ण जागृति का प्रतीक है। इस पूर्ण जागृति की अवस्था को ही बुद्ध तत्व और शिव तत्व कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के सभी दुख विसर्जित हो जाते हैं। जीवन की प्रत्येक क्रिया उसकी साधना का अंग बन जाती है। वह चलते फिरते, उठते बैठते, पढ़ते लिखते, नहाते धोते साधनातर रहता है और सारी क्रियाएं उसके लिए जप, तप और ध्यान सिद्धि होती है, क्योंकि इन तपस्याओं की अनुभूतियां उसे सहज में अपने आप होती रहती हैं।

सुनने वालों, यह है फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो और इसमें आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्वप्न विज्ञान। ये इसका विषय है स्वप्न विज्ञान कि हमें सपने क्यों आते हैं और सपने हम क्यों देखते हैं और उनका मतलब क्या है। और आज मैं आपको स्वप्न की परिभाषा बता रही हूँ। हम आगे चलते हैं सुनने वालों। निष्फल स्वप्न, निष्फल स्वप्न की जिन सपनों का कोई मतलब नहीं होता, शारीरिक एवं मानसिक कारणों के बिना जो स्वप्न दिखेगा उसका ही फल प्राप्त होगा। निरोगी एवं प्रसन्न मन स्थिति में देखा गया स्वप्न

वालों, अब हम आगे चलते हैं। फल संपन्न स्वप्न, कि जिन सपनों का फल हमें मिलता है या मिलने वाला है तो उसकी ओर हम बढ़ते हैं। इस उक्ति के अनुसार बिना प्रयास के मनुष्य को स्वप्न दिखाई देता है, ऐसे स्वप्नों का कारण अवश्य ढूंढना चाहिए। स्वप्न देवी सत्ता के अधीन होने से उसमें गलतियों का परिणाम भी कम होगा। ऐसे कारणों के लिए भी सपनों का सहारा निसंचोक रूप में ली, जिसकी जैसी भावना हो वैसा ही फल उसे प्राप्त होगा, यह सिद्धांत समेक्षी होता है। सुनने वालों, आप सबको पता है कि हम हमेशा सपने में जो चीज़ें देखते हैं वो कभी सच होती हैं, कभी सच नहीं होती, ये तो बात है। आज मैंने आपके लिए थोड़ी सी सपने की परिभाषा बताई है कि जो 10 परिभाषा है

सुनने वालों, आज मैंने आपके सामने स्वप्न की परिभाषा रखी और आपको कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें तो जरूर प्राप्त हुई होंगी। अगली बार हम फिर मिलेंगे, आगे अपना प्रोग्राम बढ़ाऊंगी अगली बार और सपनों के बारे में कुछ और जानकारी आपको प्राप्त होगी। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।

0: वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरुमे देवा सर्व कार्यशु सर्वदा। रुब्ररु मिलने का मौका नहीं पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूँ और हम सब यहाँ उपस्थित हो गए हैं कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर। ज्योति का प्रकाश में आज कुछ संदेश रखा जाएगा, जिसमें अनुराधा जी अपना संदेश रखेंगे, बबली जी और शांता जी और मैं खुद भी आपके साथ जुड़ा हूँ। हम अपने कोलेगा साथी शांता जी को आग्रह करेंगे कि अपना एंट्री ले।
1: तो यहाँ से शांता की तरफ से आप सभी को हार्दिक से स्वागत है आज इस ज्योति का प्रकाश के कार्यक्रम में।

0: हमारे दूसरा साथी बबली आसरा जी भी उपस्थित है।
1: हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्या पता कल हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।
0: सुनने वालों, हम वही गीत की ओर बढ़ेंगे जो हर सप्ताह हम सब चलाते आए हैं कि तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डड़े।

0: जी करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे। सुने वालों, हमारे कुलेखा साथी अनुराधा जी भी हमारे साथ टेलीफोन से और जुड़ गए हैं। अनुराधा जी, मैं आपको और जो अर्थ सेंडिंग में ला रहे हैं, और आप अपना संदेश रखिए।
1: सुनने वालों को अनुराधा का बहुत बहुत नमस्कार, और मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छी तरह से होंगे। अभी माँ शिवरात्रि का महापर्व मनाया गया। इस दिन फिर से मंदिरों में जगमग जगमग सहस्त्रों ज्योतियां जली, अनहद घंटों की ध्वनि गूंजी, शिवलिंगों पर जल अर्पित हुआ। हर हर महादेव, ओम नमो शिवाय आदि मंत्र गूंजने लगे। इस तरह वातावरण शिवमय हुआ। भोलेनाथ का यह महापर्व हमें केवल भारी ज्योतियां दिखाने, भारी घंटियां सुनाने या केवल भारी मंत्रों का उच्चारण मात्र व जलाभिषेक अर्पित करने के लिए नहीं आता, बल्कि हमें देवाधिदेव महादेव की शाश्वत ज्योति, अनहद नाद और भीतरी अमृत के अनुभव से जोड़ने आता है। यह महाशिवरात्रि का जो पर्व आया, भारी मंदिर की पूजा ही नहीं, अंत जगत के अलौकिक मंदिर का साधक बनाने ही आता है। शिव की महिमा मनाने ही नहीं, बल्कि शिवत्व को जानने और उसमें स्थित त्वच ज्ञान का बोध कराने ही भी आता है। शिवरात्रि में शिव की पूजा की जाती है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिव ने सृष्टि के कल्याण, इस दुनिया के कल्याण के लिए ही समुद्र मंथन से उत्पन्न विश्व को अपने कंठ में उतारा और नीलकंठ बन गए। शिव को जो कल्याण करने का भाव है, वही शिव तत्व कहलाता है। शिवोहम का उद्देश्य वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने भीतर इस शिवत्व को धारण कर लेता है, उसे अपने आचार व्यवहार में उतार लेता है। महाशिवरात्रि का जो पर्व उत्सव मनाया गया, उसमें शिव की उपासना तभी सार्थक होती है जब हम दूसरों के कल्याण के लिए विष पीने को तैयार रहें, अर्थात दूसरे के कष्टों के निवारण व सहयोग के लिए तत्पर रहें, हमेशा तैयार रहें, दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहें। इसी तरह हम शिव तत्व प्राप्त कर सकते हैं और शिव के आशीर्वाद के हकदार बन सकते हैं। असल की यही शिव की सही उपासना इसी को मानी जाती है। तो फिर आइए हम सब मिलकर त्याग व कल्याण के पवित्र भाव के साथ, ये हर समय शिवरात्रि के समय शिव की आराधना इसी प्रकार सच्चे दिल से किया करें, क्योंकि सही मायने में कल्याण व त्याग के भाव से ही तो शिव प्रसन्न होंगे। भगवान शिव ने देवी पार्वती को समय समय पर कई ज्ञान की बातें बताई हैं, जिनमें मनुष्य के सामाजिक जीवन से लेकर पारिवारिक और वैवाहिक जीवन की बातें शामिल हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती को 5 ऐसी बातें बताई थीं जो हर मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, जिन्हें जानकर उनका पालन हर किसी को करना ही चाहिए। चलिए जानते हैं ये कौन सी 5 बातें हैं जो इतनी महत्वपूर्ण हैं। क्या है सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पाप? तो पहली बात यही है, प्रश्न यही है, क्या है सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पाप, क्या होता है? देवी पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म और अधर्म मानी जाने वाली बात के बारे में बताया है। भगवान शंकर कहते हैं, तो जो श्लोक उन्होंने बोला, नास्ति सत्यात् परो नांत तात पातंग परम। उन्होंने अर्थ इसका मतलब यह है, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना या उसका साथ देना। इसीलिए हर किसी को अपने मन, अपनी बातें और अपने कामों से शामिल करना चाहिए जिनमें सच्चाई हो, क्योंकि इससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। असत्य कहना या किसी भी तरह से झूठ का साथ देना मनुष्य की बर्बादी का कारण बन सकता है। तो चलिए जाने कि ये दूसरी बात कौन सी है। दूसरी बात यह है, काम करने के साथ इस एक और बात का रखें ध्यान। तो कौन सी बात है और जो श्लोक क्या है? श्लोक का है, श्लोक इस प्रकार है, आत्म साक्षी भवे नित्य मात मनुष्य तुति तु शुभा शुभे। अर्थात मनुष्य को अपने हर काम का साक्षी यानी गवाह खुद ही बनना चाहिए, चाहे फिर वह अच्छा काम करे या बुरा। उसे कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा है। कई लोगों के मन में गलत काम करते समय यही भाव मन में होता है कि उन्हें कोई देख नहीं रहा है, और इसी वजह से वे बिना किसी भी डर के पाप कर्म करते जाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। मनुष्य अपने सभी कर्मों का साक्षी खुद ही होता है। अगर मनुष्य हमेशा यह एक भाव मन में रखेगा तो वह कोई भी पाप कर्म करने से खुद ही खुद को रोक लेगा। चलिए जानते हैं ये अब तीसरी बात कौन सी है। तो तीसरी बात यह है, कभी ना करें ये तीन काम करने की इच्छा। ये कौन से काम करने की इच्छा बात की जा रही है? तो श्लोक ऐसे जाता है, मनसा कर्मणा वाचा नच काण क्षेत्र पात कर्म। अर्थात इसका अर्थ यह है, आगे भगवान शिव कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को मन, वाणी और कर्मों से पाप करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा काम करता है उसे वैसा फल भोगना ही पड़ता है। यानी मनुष्य को अपने मन में ऐसी कोई बात नहीं आने देना चाहिए जो धर्म ग्रंथों के अनुसार पाप मानी जाए, जो सही ना हो। ना अपने मुंह से कोई ऐसी बात निकालनी चाहिए और ना ही ऐसी कोई काम उन्हें करना चाहिए जिससे दूसरे को कोई परेशानी या दुख पहुंचे। पाप कर्म करने से मनुष्य को ना सिर्फ जीवित होते हुए इसके परिणाम भोगना पड़ते हैं, मरने के बाद नरक में भी यातनाएं झेलना पड़ती हैं। चलिए अब जानते हैं ये वो चौथी बात कौन सी थी जो शिवजी से पूछी गई। सफल होने के लिए ध्यान रखें, ये एक बात संसार में हर मनुष्य को किसी ना किसी मनुष्य वस्तु या परिस्थिति से आसक्ति यानी लगाव होता ही है। लगाव और मोह का ऐसा जाल होता है जिससे छूट पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इससे छुटकारा पाए बिना मनुष्य की सफलता मुमकिन नहीं होती। इसलिए भगवान शिव ने इससे बचने का एक उपाय बताया है। तो ये चौथी बात हमें पता चलती है कि शिव जी ने इसका क्या उपाय बताया है। श्लोक इस प्रकार है, दोष दर्शी भवेत्रत यत्र स्नेह प्रवर्तते अनिष्टे नाशविंतम पश्चेत यथा शिवप्रम विरज्यते। अर्थात इसका अर्थ यह है, भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य को जिस भी व्यक्ति या परिस्थिति से लगाव हो रहा है या हो रहा हो जो कि उनकी उनकी सफलता में रुकावट बन रही हो, मनुष्य को उसमें दोष ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। सोचना चाहिए कि यह कुछ पल का लगाव हमारी सफलता का बाधक बन रहा है। ऐसा करने से धीरे धीरे मनुष्य लगाव और मोह के जाल से छूट जाएगा और अपनी सभी कामों में सफलता पाने लगेगा। चलिए जानते हैं वह पांचवी और आखिरी बात कौन सी है। यह एक बात समझ लेंगे तो नहीं करना पड़ेगा दुखों का सामना। ये कौन सी बात है? तो इसका श्लोक ऐसे जाता है, नास्ति तृष्णा सम दुखम, नास्ति त्याग सम सुखम, सर्वान कामन परित्यज्य ब्रह्मा भुवाय कल्पते। अर्थात इसका अर्थ यह है, आगे भगवान शिव मनुष्यों को एक चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मनुष्य की तृष्णा यानी इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता और इन्हें छोड़ देने से बड़ा कोई सुख नहीं है। मनुष्य का अपने मन पर वश नहीं होता, हर किसी के मन में कई अनावश्यक इच्छाएं होती हैं और यही इच्छाएं मनुष्य के दुखों का कारण बनती हैं। जरूरी है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझे और फिर अनावश्यक इच्छाओं को त्याग करके शांत मन से जीवन बिताए। तो मैं आशा करती हूँ कि भगवान शिव ने माता पार्वती को बताए थे जीवन के ये पांच रहस्य जो बताए गए, वो आप अपने जीवन में इनको उतारेंगे और इनका उच्चारण करेंगे और एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, अच्छा मनुष्य अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे। आशा करती हूँ ये आपको पसंद आया होगा।

0: प्यारे प्यारे सुनने वालों, आपको हार्दिक से स्वागत है यहाँ पर एक बार फिर से। और इस बार एक प्रश्न हम मेरे साथ की गई है और वो प्रश्न मैं आपके पास भी रख रही हूँ। और उसके बाद ये बात है कि कौन सी धातु के बर्तन में भोजन करने से क्या क्या लाभ और हानि होता है। यानी कि बर्तन आप तो जानते हैं, बर्तन यानी बर्तन जिसमें हम भोजन करते हैं, और इसमें बर्तन कई प्रकार के होते हैं। तो उसके बारे में हम बबली जी से गुजारिश है कि बबली जी आप बताओ कि कौन कौन सा बर्तन में, किस किस प्रकार के बर्तन में खाने से क्या हानि हो, क्या लाभ है।
1: हाँ जी, ज़रूर शांता जी, बर्तन भी कई प्रकार के होते हैं शांता जी, जैसे सोने के बर्तन,
0: अच्छा,
1: चांदी के, कांसा, तांबा, मिट्टी
0: जी,
1: और भी वगैरह वगैरह।
0: हाँ, पोर्सेलेन।
1: हाँ जी,
0: पोर्सेलेन वो भी मिट्टी के बनता है।
1: पोर्सेलेन वो कौन सा?
0: पोर्सेलेन जो हम घर पे आजकल भी यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो कांच घत होते हैं।
1: ओ,
0: वो
1: अच्छा,
0: सफेद वाला।
1: ओ, अच्छा अच्छा
0: जी। हाँ,
1: सफेद प्लेटी वगैरह जैसे
0: जी।
1: अच्छा, तो मैं शुरू करती शांता जी।
0: बिल्कुल, हम तैयार हैं सुनने के लिए, साथ में हमारे सुनने वालों भी।
1: हाँ जी, सोने के बर्तन शांता जी।
0: सोना के बर्तन?
1: हाँ जी,
0: सोने की बर्तन।
1: हाँ, सोना कह सकते हो, सोने। सोना एक बर्तन हो गया, सोने तो सब प्रकार के बर्तन, बहुत सारे। हाँ जी,
0: और सोने भी तो, नींद लेना भी सोने।
1: हाँ, वो भी सोना, सही बात।
0: पर वो बर्तन नहीं, बर्तन के बात हम करते हैं। हाँ
1: हाँ, हर चीज़ के दो दो मतलब निकल जाते हैं। तो हाँ जी, जैसे सोने के बर्तन शांता जी, सोना एक गर्म धातु है। सोने से बने पात्र में भोजन बनाने और करने से शरीर के आंतरिक और बाहरी दोनों हिस्से कठोर, बलवान, ताकतवर और मजबूत बनते हैं, और साथ साथ सोना आंखों की रोशनी बढ़ाता है।
0: अब सोना के बर्तन में खाने से इतना लाभ।
1: हाँ जी, और सोने के बर्तन तो ज़्यादातर अमीरों के, राजे महाराजों के पास ही होंगे।
0: हो सकता है, और हालांकि हम भी बना सकते हैं।
1: सोने के बर्तन मैंने कम देखे शांता जी।
0: हाँ, बनवा सकते हैं।
1: हाँ, बनवा सकते हैं। हाँ, वो कौन सी बड़ी बात है, बनवा सकते हैं
0: जी।
1: लेकिन मैंने कमती देखा है कि लोग सोने के बर्तन में खाना बनाते हैं और खाते हैं।
0: सही है, तो सही। हाँ,
1: आप जानते हैं शांता जी, भी पिछले घर कि भारत के एक बड़े बिजनेसमैन
0: जी, बड़े बिजनेस
2: मेरे ओर देख रहे हो तो मैं अंबानी जी का याद
0: जी, अंबानी जी।
1: हाँ जी, अंबानी जी की बेटी की शादी हुई
0: जी,
1: और इतने लोग आए, हम जानते नहीं थे। हमारे बेटे ने बताया कि आपको पता है उनकी बेटी की शादी हुई, सारे फिल्म स्टार, बड़े बड़े राजा महाराजा। हमने कहा हम नहीं जानते।
0: बेटी की या बेटा?
1: बेटी की भी हुई है, बेटे की भी हुई है।
0: अच्छा, हाँ।
1: थोड़े फर्क है, थोड़े दिनों का।
0: जी जी जी।
1: हाँ जी, तो अमीरों की अमीरी बात है, तो जितने अमीर उतना खर्चा। अच्छा, हम आगे बढ़ते शांता जी।
0: हाँ हाँ।
1: चांदी के बर्तन। चांदी एक ठंडी धातु है जो शरीर को आंतरिक ठंडक पहुंचाती है, शरीर को शांत रखती है। इसके पात्र में भोजन बनाने और करने से दिमाग तेज होता है, आंखें स्वस्थ रहती हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है, और इसके अलावा पित्त दोष, कफ और वायु दोष को नियंत्रित रहता है।
0: चांदी के बर्तन खाने में?
1: हाँ,
0: चांदी के बर्तन में खाने से
1: खाना बनाना और खाना,
0: और बनाना भी,
1: दोनों चीज़ें।
0: अच्छा, चांदी हाँ। के बर्तन में हमने देखे गुरुजी उसमें भोजन करते थे, चांदी के बर्तन, चांदी के गिलास, एकदम से अलग जी।

0: जो आपने सुने बर्तन के बात हो रहे है और हमारे मैंग पनेल के पीछे बैठ रहा है आज संजय जी, तो धरती से गीत खाना मिलेगा पीना मिलेगा और यहाँ बबली बताएगा कि कौन से पात्र में हमको खाना मिलेगा।
1: जरूर शांता जी, अभी मैंने सबको बताया कि सोने के बर्तन और चांदी के बर्तन,
0: सोना चांदी जी।
1: अब हम आगे बढ़ते शांता जी, अब है कांसा के बर्तन। कांसे के बर्तन में खाना खाने से बुद्धि तेज होती है, रक्त में शुद्धता आती है, रक्त पित्त शांत रहता है और भूख बढ़ती है। लेकिन कांसे के बर्तन में खट्टी चीज़ें नहीं परोसनी चाहिए। खट्टी चीज़ें इस धातु से क्रिया करके विषैली हो जाती है जो नुकसान देती है। कांसे के बर्तन में खाना बनाने से केवल 3% ही पोषक तत्व नष्ट होते हैं।
0: ये तो बहुत फ़ायदाकारक है, फायदा इसमें है।
1: फायदा तो है, लेकिन कांसे के बर्तन में खट्टी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। जैसे नींबू हुआ, टमाटर भी नहीं, क्योंकि खट्टास से वो चीज़ विषैली हो जाती है।
0: अच्छा
1: हाँ जी, अब हम आगे चलते हैं
0: जी।
1: तांबे के बर्तन। तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने से व्यक्ति रोग मुक्त बनता है, रक्त शुद्ध होता है, स्मरण शक्ति अच्छी होती है, लीवर संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। तांबे का पानी शरीर के विषैले तत्वों को ख़त्म कर देता है, इसलिए इस पात्र में रखा पानी स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। तांबे के बर्तन में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे शरीर को नुकसान होता है।
0: तो इसमें फ़ायदा भी है और ना फायदा भी है, हानि और नुकसान इसमें है। तांबा अगर हम कहें तो तांबा वो जिस पे हम मंदिर में जो देखते हैं ना, शिवलिंग के ऊपर जो,
1: हाँ जी,
0: जो धरता है
1: घड़ा
0: जो धरता है, उसका रंग जो है थोड़ा लाल है।
1: हाँ जी, वही तांबा है।
0: वो तांबा है,
1: तांबा वो भी है। और पहले मंदिरों में तांबे के गिलास में पंचामृत रखते थे।
0: पंचामृत?
1: हाँ जी।
0: अच्छा,
1: अभी भी है, उसी में रखते हैं।
0: और अभी आपने कहा तांबे में क्या रखना नहीं चाहिए?
1: तांबे में, तांबे का पानी शरीर के विषैले तत्व को ख़त्म कर देता है, इसलिए इस पात्र में रखा पानी स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है
0: जी।
1: तांबे के बर्तन में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे शरीर को नुकसान होता है।
0: नुकसान होता है। तो मेरे ख्याल से आप जैसे कहते हैं कि तांबे के बर्तन में पानी धर के और पी, तो अगर आप इसमें रात में पानी धर दे और सुबह में पी ले तो तंदुरुस्ती के लिए भी बहुत ठीक होगा।
1: हाँ, वो ठीक। आजकल मैंने देखा है शांता जी, आजकल तो बोतलें आ गई हैं तांबे की।
0: तांबे के बोतल भी आ गई।
1: हाँ जी, उसमें लोग पानी भर के अपने काम पे या स्कूल में बच्चे लेके जाते हैं।

0: बहुत अच्छा।
1: अब हम आगे चलते हैं, पीतल के बर्तन।
0: पीतल यानी कोपर।
1: हाँ जी, पीतल के बर्तन में भोजन पकाने और करने से कृमि रोग, कफ और वायु दोष की बीमारी नहीं होती। पीतल के बर्तन में खाना बनाने से केवल 7% पोषक तत्व नष्ट होते हैं।
0: ये आखिरी लाइन जो आपने कहा, औषधि नष्ट होता है, यानी कि विटामिन जो कहते हैं, विटामिन खुरंत और
1: सब्जी
0: में जो खुरंत
1: 7% नष्ट होती है।
0: विटामिन जो होता है, अगर आप तांबे के बर्तन में भोजन पकाओगे तो उसका विटामिन जो है कम नष्ट होता है।

सुनने वालों, जैसे कि आप सुन रहे हैं किस प्रकार और कौन सा बर्तन में जो आपको और भोजन तथा उनके उनके बारे में जानकारी जो बबली जी आज लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद में हम आपके साथ फिर कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे।